0: क्या हो रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में। वेल, खूबसूरत उस वे से नहीं, बट खूबसूरत यही है कि आज भी, आज बहुत बारिश हो रही है। सो यस, थोड़ा थोड़ा मैं खूबसूरत बोल के थोड़ा आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। आई नो आप बहुत ही डिसअपॉइंट भी हो रहे होंगे शायद कि यार वेदर ऐसा क्यों है, क्यों फिर से बारिश हो रही है आज। कैन नॉट इवन गो आउट, कैन नॉट इवन डू एनीथिंग, ओनली इंटरनली वी कैन गो आउट, आई मीन इंटर्न किसी मॉल में जहाँ पे इंटर्न शॉपिंग कर सकते हो वो आप कर सकते हो। सो यस, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बहुत ही बढ़िया दिन है। आप जाइए बाहर और अच्छे से टाइम स्पेंड करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इंडोर रह के। जी हाँ, आप घर पे भी बैठ के अपने प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों के साथ। बट यस, आउटडोर भी ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जा रहा है, नो डाउट। बीच में सूरज देवता हैं जो वो आ रहे हैं और आपको एकदम लुक दे रहे हैं और फिर वापस चले जाते हैं चुपके से। बट यस, ओवरऑल दिन जो है ये ऐसे ही रहने वाला है। बट आप बताइए, ओवरऑल आपका जो मॉर्निंग से अभी तक का टाइम है वो कैसा गया है? 5599 पर मुझे टेक्स्ट कह सकते हैं। मेरा नाम केतन है, मैं अभी से लेकर 3 बजे तक हूँ। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गपशप करनी है। शुरुआत करेंगे होम सिक रेमेडी से। तो यस, मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के होम सिक रेमेडीज के लिए मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए 5599 पे अभी।
1: बचाओ क्या,

Well, क्या ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं फ्रॉम बींग योर सिटी, फ्रॉम योर बींग योर स्टेट और योर कंट्री. कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे. नील कहते हैं नथिंग बीट्स मम्स होम मेड पराठास, आई मिस देम एवरी वीकेंड. वेरी वेरी ट्रू. ऑफकोर्स ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. मे बी यू माइट गेट द टेस्ट ओवर हियर, बट स्टिल वो जो चीज़ है, वो जो एसेंस है और जो एग्जैक्ट जो प्रेजेंस है आपकी मॉम का या इन एनी किसी की भी मॉम का, किसी के भी पेरेंट्स के, तो ऑफकोर्स वो एक अलग चीज़ होती है. मैं पर्सनली मिस करता हूँ एक तो खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी. एंड देन आई मिस अ लॉट इज आई डोंट नो आप लीलवे को क्या बोलते हैं, हरे हरे जो चने होते हैं उसको, आई हैव नो आइडिया कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं. हम उसे लीलवे कहते हैं, हरे चने को. लाइक मी फ्रॉम उदयपुर, हम लीलवे कहते हैं. आई एम प्रीटी श्योर आप शायद वो नहीं कहते होंगे. आप मुझे बता सकते हैं वैसे आप एग्जैक्टली क्या कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है प्रिया का, वो कहती है हाँ माई होम सिक्योर इज वन वीडियो कॉल विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. ओह दैट्स सो क्यूट, दैट्स सो क्यूट. आकाश कहते हैं आई मिस फैमिली चाय टाइम मोर देन एनीथिंग. एक्चुअली चाय, हमें चाय चाय नहीं पीनी, हमें वो वाइब चाहिए होता है. यू नो यू नीड द एनवायरनमेंट, यू नीड द पीपल अराउंड टू टॉक विथ. तो एक जो एनवायरनमेंट होता है, जो एम्बियंस होता है उस टाइम का, वही बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है. एंड आई थिंक चाय इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू फिल इट इन. सोनिया कहती है ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स इंस्टेंटली मेक मी फील एट होम. नाइस नाइस. वेल आई थिंक आपको ना वो एक कोई वो डिवाइस ना जो रेडियो की तरह दिखता है, मैं ऑब्वियसली नाम तो ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, बट यू ऑल नो दैट मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो एक वो रेडियो के दिखने जैसा डिवाइस होता है जिसमें 5,000 गाने स्टोर होते हैं, आई थिंक आपको वो ले लेना चाहिए. यू जस्ट प्ले एज सुन एज यू वेक अप एंड देन यू जस्ट प्ले इट एंड आपका दिन जो है बहुत ही बढ़िया जाएगा. सो यस, थैंक यू सो मच अगेन आप सभी के मैसेजेस के लिए. बने रहिए, आप मुझे ऑफिस शाउट आउट के लिए मैसेजेस भेज सकते हैं. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम keep calm because Punjabi swag is on.

0: चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑफिस शाउट आउट। यहाँ पे बेसिकली आपको मैसेजेस भेजने हैं और भेजने, ऑफकोर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, और कुछ मैसेजेस मिले भी हैं, आप अभी भी मुझे भेज सकते हैं 5599 पे रिगार्डिंग व्हाट इज वन थिंग यू मिस, यू एक्चुअली हैविंग इट राइट नाउ, और इफ यू हैव बॉट इट फ्रॉम आउटसाइड डू लेट मी नो कहाँ से किया है और किन किन लोगों के साथ खा रहे हैं। अगर आप घर पे खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं और किसने बनाया है बता सकते हैं मुझे 5599 पे। बट यस, होममेड पनीर रैप्स टुडे थैंक्स मॉम, ये आकाश ने भेजा है मैसेज, और उसके साथ ही लंच ब्रेक प्लस हॉट कॉफी प्लस योर शो, परफेक्ट कॉम्बो। प्रिया कहती हैं एल्बनी से, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड किया है जहाँ पे आप हमें एक नया, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं हर टाइम जितना हो सके इतने सारा ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ ताकि आप अपडेटेड रहें और आप नई नई इन्फॉर्मेशन को भी कंज्यूम कर सकें, नई नई जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है उसे भी कंज्यूम कर सकें। अभी AI हर जगह है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे।
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

ये रही बात यहाँ पे अबाउट आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड 26 जून यानी कि आज के दिन 1987 में अगर आप एडवेंचर करना पसंद करते हैं न्यूजीलैंड में तो यस दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि कीवी एडवेंचर फाइनर एजे हैकेट ने पेरिस के आइफल टावर से 110 मीटर का इलीगल बंजी जंपिंग किया था। इलीगल क्यों थोड़ी देर में बताता हूँ। वैसे उनकी टीम रात भर टावर पर छुपी रही और हैकेट ने सुबह जंप लगाया और ये स्टंट दुनिया भर में टीवी पर दिखाया गया और बंजी जंपिंग को ग्लोबल स्पॉटलाइट मिली। वैसे इस जंप ने एडवेंचर टूरिज्म को पॉपुलर बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। इसके बाद 1988 में हैकेट ने नियर कावाराउ जॉर्ज सस्पेंशन ब्रिज दुनिया का पहला कमर्शियल बंजी जंपिंग ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने न्यूजीलैंड को एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भी एस्टेब्लिश किया। वेल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वाई इलीगल इलीगल इज बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं रात में जाना बट दे वर लाइक जस्ट हाइडिंग ओवरनाइट एंड उसके बाद उन्होंने जंप लगाया था विदाउट एनीवन नोइंग अपार्ट फ्रॉम द लाइव फीडबैक या जो भी ब्रॉडकास्ट क्या होगा बाद में पता नहीं बट यस दैट इज द रीजन। बट अगेन अगर आपने किया है बंजी जंपिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताइए 551 वुड यू बी डूइंग इट अगेन बिकॉज मेरा भी सपना है बट नॉट बंजी जंपिंग आई एक्चुअली वांट टू डू द स्काई डाइविंग वो मुझे लगता है आई डोंट नो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच वन इज अगर किसी ने यहाँ पे किया है तो मुझे बताइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा वो है क्या बोलते हैं लाइक स्कैरी है इज इट बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग विच वन इज स्कैरी मोर आप मुझे बता सकते हैं 555 99 पे।

चलिए बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जिसका इंट्रो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, दैट एआई इज एवरीवेयर राइट नाउ. यू जस्ट नेम इट. आई मीन खुद आप खुद ही देखिए, अगर जो भी आप काम करें वहाँ पे भी एआई अब धीरे धीरे आने या तो आ चुका है या फिर बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस भी किया जाने वाला है. बट यहाँ पे मेन पता क्या है, डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको सतर्क रहने की बात है और यहाँ पे कैसे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई. क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और किसने सच ही कहा है दैट ये मेरा खुद का डायलॉग नहीं, ये तो कहीं और से मैंने उठाया है और से चिपका रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि एआई विल नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब, इट विल द पर्सन हु विल बी यूजिंग एआई विल टेक योर जॉब. हाँ जी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एज ऑफ नाउ बिकॉज वी आर आई डोंट थिंक सो वी आर इन टू सुपर एआई एरा. सुपर एआई एरा इज इन कि जहाँ पे खुद ही वो सब करेंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे. दैट गोन बी वेरी वेरी स्कैरी, दैट विल बी वेरी वेरी स्कैरी. बट येस, जो मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा था, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ जिसमें सैंडी रोजबी ने बात की है एआई एक्सपर्ट दर्शित पांड्या से, जो एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर के साथ हमारी बात हुई है. इनकी बात हुई है ChatGPT, जॉब्स का फ्यूचर, प्राइवेसी कंसर्न, AI के अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर रेडी स्किल्स पर सिंपल और प्रैक्टिकल बातें की गई है. सो यस, अगर आप AI को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्यूरियस है या फिर थोड़े से कंसर्न हैं, तो ये एपिसोड डेफिनेटली आपके लिए. और इनमें से अगर तीनों में कुछ भी नहीं है तो भी मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल ऑफिशियली हैव एंटर्ड इन टू द AI वर्ल्ड. सो आज नहीं तो कल ये इम्पैक्ट कर सकता है आपको, जाने अनजाने में. सो मेक श्योर, मैं तो कहूँगा कि आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं AI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप करिए, मुझे ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए. बट यस, कुछ और भी पॉडकास्ट के लिए आप कैचअप के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए, उनके जो मेंटर्स हैं या फिर उनके जो बहुत ही बढ़िया मोमेंट हैं वो आप सुन सकते हैं, हमें ऐसे BF लिखिए 5599 पे भेज दीजिए. लंच बॉक्स विद केतन. ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: The global phenomenon returns.
5: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
6: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
4: Watch the series the world will be talking about.
7: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
5: This is the moment you become queen.
4: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
8: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
9: Super Cheap Auto's big brand sale is on now. Save big on Tuta Wax, car detailing chemicals and accessories, now 25% off, and Raptor spray paints, now 20% off. Sale ends June 28th. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
10: As a baby, I was burnt in hot water.
11: At five, I got burnt when I got too close to a gas heater.
12: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
13: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
14: Zabardast hits.
15: Shuru ho jaye to rukte nahi.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
16: Hum. Chutney shots.
17: चलिए लेट्स टॉक अबाउट अभी के लिए इस खबर चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे फटफट न्यूज़ पढ़ते हैं बट अभी के लिए ये मेरे को लगा कि शायद आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर उसे विस्तार से मैं पढ़ूँ तो। नेशनल पार्टी ने होम ओनर्स के लिए एक होम एनर्जी फंड प्रपोज किया है जिससे लोग सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज, हीट पम्प्स, इंसुलेशन और दूसरी एनर्जी एफिशिएंस अपग्रेड के लिए लो कॉस्ट लोन्स ले सकेंगे। लोन रीपेमेंट्स रेट्स बिल के साथ ही जाएगी, क्या बात है, ताकि अपफ्रंट कॉस्ट का बर्डन ना हो। यानी कि जब आप बिल पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उसी के अंदर आप यू कैन पे द रेंट फॉर द नॉट द रेंट बट यस लोन को रीपे कर सकते हैं सोलर का। वैसे पार्टी का कहना है कि न्यूजीलैंड में सिर्फ लगभग 3% होम्स पर सोलर पावर लगा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। और इस इनिशिएटिव का गोल हाउस होल्ड को पावर बिल्स कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शंस बढ़ाना है। बात तो बहुत ही सही है। वैसे इसके साथ ही नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और होम एनर्जी अपग्रेड्स के लिए प्लानिंग और कंसेंट रूल्स को सिंप्लीफाई करने की बात भी कर रहे हैं ताकि अप्रूवल्स जल्दी मिल सकें और इंस्टॉलेशंस भी आसान हो जाए। वेल, मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा यार, मेरा तो मन भी है कि जितना जल्दी हो सके, जितने कम टाइम पे मैं यहाँ पे अपने घर पे, घर की छत पे सोलर लगवा लूँ, बिकॉज एक्चुअली वर्थ होता है, यू नो, एंड देन आई कैन चार्ज माय कार एनी टाइम, एनी यू नो, जब भी मेरा मन करे, ना कि मैं स्पेशल टाइम के लिए वेट करूँ। एंड दूसरा ये है कि यू नो पावर ऑफ कोर्स, यू नो, व्हेन यू हैव अ किड, यू नो, यू नीड टू स्विच ऑन, मेकिंग श्योर कि आपके हीट पम्प इज ऑल्सो इन द प्रॉपर एडाप्टिव क्लाइमेट भी है जो प्रिफर्ड वाला होता है, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट, एंड तो बेसिकली हमेशा ऑन रहे या ऐसा नहीं रहे, वहाँ पे पावर जाती है, प्लस बच्चा टीवी देखेगा, इवन दो टीवी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग लाइक यू नो वो बिल कंट्रोल करने के लिए आई थिंक वन वे वाला जो होगा इन्वेस्टमेंट वो सही रहेगा. बट यस, यहाँ पे एक्चुअली किसी ने कैलकुलेशन भी की थी, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू थिंकिंग टू गेट रिटर्न फ्रॉम द सोलर, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको रिटर्न भी मिलता है, तो वहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं. कुछ लोग बोल रहे थे कि यू नीड टू कैलकुलेट, यू सी फ्रॉम हियर दैट यस यू विल बी गेटिंग सम, यू माइट बी एलिजिबल टू गेट सम फंडिंग, बट उसका मेन है कि आप कितने टाइम बाद यू विल बी एबल टू, सो यू नीड टू कैलकुलेट द रेंट प्लस हाउ मच मनी यू कैन सेव आफ्टर हैविंग द इंस्टॉलेशन, बिकॉज यू एक्चुअली गोना पे द लोन फॉर दिस वन एज वेल. सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, बट वेरी इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट एज वेल.
16: लंच बॉक्स विद केतन. इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.

वेल अभी का ये रहा मेरा सवाल इस आर का, और वो ये है कि व्हाट इज द वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन यू एवर हैड एंड साइलेंटली यू लव इट, लाइक यू मे डोंट वांट टू टेल इट टू द पीपल बट यू साइलेंटली लव इट. आई मीन यहाँ पे मुझे तो बताइएगा आप, हो सकता है लोगों को ना बताओ, कोई बात नहीं, बट मुझे बताइए 5599 पे. आई वुड लव टू हियर. मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे नमकीन में, जो नमकीन होती है सेवरी, उसमें सॉस डाल के उसको ब्रेड या रोटी के साथ खाने का मजा ही मुझे बहुत बढ़िया लगता है. मतलब कभी कुछ घर में खाने को नहीं है तो मैं नमकीन के अंदर सॉस डालता हूँ और फिर रोटी या फिर ब्रेड के साथ खाता हूँ. दैट इज़ माई गुड टू गो. लाइक लिटरली कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं मुझे, नमकीन ऑलरेडी बनी हुई होती है और ब्रेड चाहिए होती है और सॉस ऑलरेडी घर पे होता है, तो जब कभी बनाने का मन नहीं है, ये किया वो खाया और हो गया, मज़ा ही आ जाता है. आप भी मुझे बताइए कौन सा वियर्डेस्ट थिंग आपने खाई है या फिर यू लव इट साइलेंटली. जी हाँ, मुझे 5599 पे आप बता सकते हैं.

0: साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा साजी लो

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे
2: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू लंच बॉक्स। क्यों ना, नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। यू आर लिसनिंग टू हम 104.2 एफएम, जहां पे हम चलाते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने। वेल यस, इस आर में भी आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ, बहुत अपडेट, बड़े बड़े चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जिसमें सबसे ऊपर ऑफकोर्स लंच टाइम रेंट लाइन होगा। कुछ ऐसी रेंट वाली बातें जो आप सचमुच बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। कल भी मुझे काफ़ी बढ़िया कॉल्स आते हैं, आप मुझे आज भी मैसेजेस या कॉल कर सकते हैं थोड़ी देर में, बट अभी के लिए एंजॉय करिए। इस आर में आपके लिए बॉलीवुड भी खबर लेके आने वाला हूँ, सो यस, डोंट गो एंड स्टे ट्यून फॉर माई शो।
1: बचाओ क्या,

0: सो यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे भेजिए मैसेजेस, और यस आप 5599 पे ऐसी बातें बता सकते हैं जो आज या फिर कल आपके साथ घटित हुई है, या यू नो कुछ पहले भी हुई हो तो इट्स ओके, आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं. बट यस, आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारी बातें आप तक मैं लेके आने वाला हूँ लंच टाइम के साथ साथ. आप एक बढ़िया गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, ये भी शो होने जा रहा है ऑन 3rd July 7:30 PM के बाद, तो आप विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं. बट बिफोर दैट यू नीड टू बाय द टिकट्स, premierTickets.co.nz, बिकॉज सिद्धार्थ रनेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन काफ़ी फेमस है उनके शोज को सोल्ड आउट करने में. जी हाँ, उनका शोज जो है हमेशा सोल्ड आउट ही रहता है. सो काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज ऑफर में फंसने के बाद कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है इसमें. सो यस, बहुत ही एंटरटेनिंग, फुल ऑफ लाफ एंड फुल ऑफ अमेजिंग ह्यूमर ऑफ गुजरात. जी हाँ, गुजराती ह्यूमर भी बहुत भरपूर है. तो देखने जाइए डेफिनेटली और एंजॉय करिए शो.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: Maddie didn't think she needed a DVS system.
7: I've got a heat pump.
6: That should do, but it didn't do it, did it, Maddie?
7: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
6: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
9: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
10: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
11: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
12: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz.
13: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.

0: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में स्वागत करते हैं आपका। यहाँ पे ऑफ कोर्स काफी मैसेजेस आए हैं जो आप मुझे भेज सकते हैं अभी भी, और जो मिले हैं तब तक उनकी तो मैं बात कर लेता हूँ। यू कैन एक्चुअली टेल दैट व्हाई पीपल डू सर्टेन थिंग्स, ये आप मुझे भेज सकते हैं जस्ट इन केस यू नो इफ यू रियली फील इरिटेटेड अबाउट एनीथिंग, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। रवि भाई का मैसेज आया है, वो कहते हैं व्हाई डू पीपल से ऑन माय वे व्हाइल स्टिल इन द शावर। रवि भाई बात तो सही है लेकिन मेरा एक सवाल ये, आपको कैसे बताऊं शावर में? पकड़े गए। But anyways, jokes apart, very good point to discuss. ये इसके ऊपर लगता है मुझे काफ़ी जनहित पे जारी वाली बातें करनी चाहिए, सरकार से भी अपील करनी चाहिए कि भाई जो ये ऐसे झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं जो शावर में होते हैं लेकिन बोलते हैं कि भाई मैं बस पहुंचा, ऑन द वे हूँ, भाई हमारे कान खुले रहते हैं। Anyways, पूजा कहती है इंडियन मम्स जस्ट 2 मिनट वॉक 40 मिनट्स लेक्चर। ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, मतलब चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के पास टाइम का कोई वैसा नहीं होता है। बोलते कुछ और है होता कुछ और है। बोला केतन सुरेश फ्रॉम मैंगरे, फीजी इंडियन डैड रिफ्यूज जीपीएस एंड देन ब्लेम द रोड। नॉट अबाउट फीजी इंडियन डैड्स बट दिस इज काइंड ऑफ फ्यू पीपल फ्रॉम इंडिया एज वेल, फ्यू ऑफ नॉट जस्ट द डैड बट यस यंगस्टर एज वेल, उनमें कितना ईगो होता है भाई, अरे भाई मुझे रास्ता पता है। सेम विद वन ऑफ माई फ्रेंड एज वेल, भाई उसमें उसके ऐप सब है उसके फ़ोन में, लाइक यू नो जो भी ऐप्स होते हैं जो मैप्स दिखाते हैं वो सब है उसमें, बट स्टिल ही वॉन्ट यूज़ इट, ही विल जस्ट कीप डूइंग इट। हमारा एक शूट था वहाँ पे, बंदा इतना लेट आया, मैंने पूछा क्या हुआ, वो फ़ोन पे लगा हुआ है कि भाई मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, यार कहाँ से रास्ता, ये एटसेट्रा। मैंने कहा भाई आई हैव सेंट यू द लाइव लोकेशन, वाई कांट यू जस्ट क्लिक एंड डायरेक्ट इट टू द any maps and then you come here directly, it is so easy, ye yahi exit pe wo 15 minute tak ghumte raha but khair uski aadat hai to main kya bolun, wo to aadat badalne wali thi nahi, but anyways agar aapke sath bhi aisa kuch hua hai to mujhe bata sakte hain 5599 pe.
1: Lunchbox with Ketan,
2: heera ladka hai, telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
3: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

पहले साउथ आइलैंड में फाइनली बर्फबारी और खराब मौसम के बीच स्टेट हाईवे 3 का एक हिस्सा वैकिनो जॉर्ज में स्लिप्स के कारण रोड जो है उसे टेम्परेरी बंद कर दिया है एनजेडटीए के मुताबिक। वैसे हैवी रेन भी हो रही है वहां पे और बाद में ओवरनाइट फ्रेश लैंड मूवमेंट भी हुआ और डेब्रिस को क्लियर करने के लिए रोड भी बंद कर दी गई है। साउथ आइलैंड के कई हायर एलिवेशन हाईवेज पर भी स्नो गिर रही है, खास करके लिंडिसपास और दूसरे अल्पाइन रूट्स में। मोटर्स को एक्स्ट्रा कॉशियस के साथ ड्राइव करने को कहा गया है और कंडीशन वेदर वाली भी चेक कर लें। सो यस, मेट सर्विस के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड सडनली सिस्टम साउथ आइलैंड को अफेक्ट कर सकता है जो जिसकी वजह से स्नो और आइसी कंडीशन ट्रैवल को डिस्टर्ब कर सकती है। लंच

0: Well, एक और अपडेट दे देता हूँ हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में. आज के दिन 1918 की ये बात है जब ऑस्ट्रेलियन पैसेंजर स्ट्रीमर विमेरा ऑकलैंड से सिडनी जाते वक्त नॉर्थलैंड के पास कैप मारिया वैन डिमेन के वहाँ पे उतर गए थे और वहाँ पे एक जर्मन माइन से टकरा गई और वहीं उसी टाइम डूब गई. ये माइन जर्मन राइडर वॉल्फ ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 1970s में वहाँ पे बिछाई गई थी. शिप में 151 यानी कि 151 लोग थे जिसमें से 76 पैसेंजर और 75 क्रू मेंबर थे. हादसे में 26 लोगों ने अपनी जान खोई जबकि समुद्र शांत होने की वजह से कई लोग लाइफ बोट के जरिए बच गए. अगले दिन 125 सर्वाइवर्स को नॉर्थलैंड के तट पे काफ़ी सेफली पहुंचाया गया और बाद की इंक्वायरी में पता चला कि कैप्टन केल ने काफ़ी कॉन्फिडेंशियली नेविगेशन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं की थी. मैरीटाइम ट्रेडिशन के मुताबिक कैप्टन आखिर वक्त तक शिप पर ही रहे और शिप के साथ भी डूब गए. काफ़ी सिमिलर टाइप लग रही है टाइटैनिक जैसी लग रही है. बट यस, वो टाइटैनिक जो थी वो जिस तरह से फिल्माया गया था वो एक अलग स्टोरी थी और ये एक अलग स्टोरी थी. वो एंटार्क्टिका की चट्टानों से टकराई थी और ये कैप मारिया की चट्टानों से. लंच बॉक्स विद केतन.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
1: हाँ.

0: हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
9: And who Tejal Vyas?
8: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
9: exchange offer.
10: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari le jao. Phone karo 021-244-6278 par.
11: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
12: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
13: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūtaki, All Together Auckland.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Well, बॉलीवुड की अगर बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा. बट उनकी जर्नी जो शुरू हुई थी, उनके पहले का जो टाइम था, वो यानी जो इनिशियल टाइम था उनका, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बताया. उन्होंने एक इंडिया के किसी लोकल बॉलीवुड चैनल से भी बात की है और स्टाइल आइकन्स समिट अवार्ड 2026 में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उनकी पहली अर्निंग ने उनके परिवार की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा फ़र्क लाया. यानी कि वो इतने ज़्यादा मतलब कहते ना, पता नहीं मेरे को ये शब्द यूज़ करना इज़ अप्रोप्रिएट ओवर हियर और नॉट, बट काफ़ी अनअफोर्डेबल फैमिली से थे. काफ़ी कुछ सोचना पड़ता था और काफ़ी यू नो दिक्कतें थी. सो बेसिकली उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्ट्रीट प्लेज और प्रमोशनल शोज करते वक्त उन्हें अपना पहला चेक जो है वो मिला था और उनकी मां ने मुश्किल वक्त में अपने गहने गिरवी रखे थे और नवाजुद्दीन ने अपनी पहली कमाई उन्हें ही दी. उसकी मदद से वो अपने गहने जो है वापस ले सकी. जैसे नवाजुद्दीन ने बताया कि ये भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार खुद को बिग स्क्रीन पर देखा तो वो खुश होने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस की कमियाँ ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे कि और बेहतर इसको कैसे करूं. ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स आप प्राउड तो फील करते हो, बट ये तो एक अच्छे कलाकार की बड़ी बात है कि जो उनकी भूख थी वो अलग थी. इट वॉज़न्ट द लाइमलाइट, इट वॉज मोर अबाउट हाउ ही कैन बिकम सम सक्सेसफुल पर्सन, यू नो, जो आज वो सिचुएशन में, आज जिस सक्सेस को यू नो टेस्ट कर रहे हैं.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स. मैडम केतन है एंड यस, मैंने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले जिसका अनफॉर्चुनेटली एक भी जवाब नहीं आया है. लगता है आज पब्लिक अपना सीक्रेट जो है हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं. बीच में कुछ कॉल्स तो आए थे बट ऑफकोर्स वो मिस कॉल थे, उठा नहीं पाए हम. बट यहाँ पे मिस कॉल से याद आया सैंडी जिया.
1: मिस कॉल से तुम्हें क्यों याद आया?
0: मतलब मिस आप हो.
1: अच्छा,
0: कॉल आप करते हो.
1: कुछ भी है,
0: टैलेंट भरपूर है, मतलब घमंड नहीं है.
1: वही ना.
0: घमंड नहीं है.
1: सवाल क्या था?
0: सवाल मैंने पूछा था कि आपने लाइफ में हर बार ऑब्वियसली कुछ ऐसी वियर्डेस्ट कॉम्बो आपने क्रिएट किया है खाने में जो सीक्रेटली आपको बहुत पसंद है बट अब ऑब्वियसली आप बता नहीं सकते. अब मैंने क्या किया है, लास्ट टाइम मैंने ये बोल दिया ना मैंने कि आप पब्लिकली बता नहीं सकते तो ऑब्वियसली कोई क्यों बताएगा. अब मेरे को रियलाइज हो रहा है. बढ़िया, आप अपने पे लागू मत करना, आप बताइए.
1: वियर्ड तो पता नहीं, लेकिन मेरे को, मैंने एक बार वो ट्राई किया था कि ब्रेड के ऊपर ऐसा बटर लगा के एंड देन बटर के ऊपर जैसे नमकीन होता है ना वो रख के वो खाया था. यूजली ब्रेड के ऊपर नमकीन कौन खाता है? नमकीन जैसे वो भुजिया वगैरह वो सब, नॉट भुजिया, यहाँ पे कई लोग भुजिया पकौड़े को भी कहते हैं, नॉट पकौड़े वाले भुजिया, यू नो भुजिया प्रॉपर नमकीन वाला, सेवियाँ छोटी छोटी और वो सब.
0: मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ. सो बेसिकली आपने जो बताया है,
1: हाँ,
0: मैं पहले बता देता हूँ, इनको कुछ नहीं पता था मैंने क्या सवाल किया था. इनको ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था. जो मैंने जवाब बताया था एग्जैक्टली यही था.
1: क्या बात कर रहे हो?
0: कि मुझे भी ये सीक्रेट यही पसंद है. द ओनली डिफरेंस वाज कि मैं सॉस नहीं डालता था, टोमेटो केचप वो भी डाल के आई यूज्ड टू ईट विद द ब्रेड.
1: तो बेसिकली आपने काफी लोगों ने ट्राई किया है ये, है ना?
0: तो मतलब मेरे को चलो फील हो रहा है कि हाँ मैं वियर्ड तो नहीं
1: था, नॉर्मल हूं
0: मैं नॉर्मल हूं.
1: हां, और बहुत अच्छा टेस्ट करता है.
0: मुझे तो बहुत फेवरेट लगता है. मतलब मैं कह रहा हूं ना, एक तो
1: और कच्ची मैगी तुमने कभी खाई है
0: क्या?
1: कच्ची मैगी, मतलब मैगी को बिना बनाए
0: कच्ची मैगी. हाँ, मतलब वो क्रंच करके. हाँ, वो ना मैंने रिसेंटली खाई थी, किसी ने मेरे को ऑफर किया था तब.
1: जो हम चीजें बता रहे हैं गाइस वो फॉलो नहीं करेगा, ये सब अनहेल्थी है और किसी के सिस्टम के लिए खराब भी हो सकता है.
0: मतलब शेयरिंग की सिस्टम.
1: या एग्जैक्टली, बट वी जस्ट शेयरिंग के कभी कभी ऐसी चीजें हम करते हैं. मैं तो बॉर्नविटा बहुत खाया यार. बॉर्नविटा मतलब
0: मैंने भी बहुत
1: चम्मच भर भर के.
0: मैंने जब जब बॉर्नविटा खाया तब तक मैंने जूते भी खाए.
1: हाँ, और फिर हमारा बॉर्नविटा ऐसे शेल्फ पे रखा जाता था जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता था.
0: हाँ,
1: तो वो ऐसी चीजें की है.
0: मतलब एक और चीज बता रहा हूँ कि जो जो जो टॉपिक आप बोल रहे हो, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है. वो सारी इमेजिनेशन है, इट इज कमिंग बैक. वो जो नॉस्टैल्जिक वाली थी कि यार सही में, जैसे अभी मेरी एज है 34, तो अभी एक पल में लगता है कि 34 के 34 ही हो गए. बट देन आई एम रियलाइजिंग कि यार जब जब जैसे आप बातें बता रहे हो, मैं कहा यार 34 ईयर्स की मेमोरीज भी तो है.
1: 100% बहुत सारी चीजें की होती है यार हमने. और खाने में तो मेरे को लगता है बहुत एक्सपेरिमेंट किए ही होंगे और भी बहुत सारे किए होंगे टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स.
0: मैं तो बहुत ही करता था. इसलिए पापा मम्मी भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते थे मेरे पे. क्योंकि छुप छुप के पता है, मैं वही चीज बता रहा था कि व्हाई आई यूज्ड टू लव दैट टेस्ट, बिकॉज एक तो टेस्ट मुझे बहुत सही लगता था. दूसरा मुझे ऑब्वियसली मुझे तब बनाने नहीं आता था, आज भी नहीं आता है. आज भी अगर मुझे कुछ बोले तो आई डोंट माइंड. तो सबसे बेस्ट है ब्रेड मिल जाता है, नमकीन रेडी रहती है,
1: क्या बात है,
0: केचप डाला, कुछ करना
1: मुझे
0: ही नहीं
1: है. एक वियर्ड कॉम्बिनेशन अपने आप में लगता था अंटिल अनलेस मैंने बाकियों से सुना. तो मुझे ना पुलाव जब हम खाते हैं तो मुझे उसके साथ कई बार चिप्स बड़े अच्छे लगते थे. लाइक यार मैं ना पुलाव के साथ मेरे को चिप्स कभी कभी बड़े अच्छे लगते हैं. तो मैंने जब ये एक दिन शेयर किया तो रुजबे ने भी बोला कि वो भी ऐसा करता है, नॉर्मल है वो. फिर और भी मैंने सुना, मैंने बोला अच्छा ये नॉर्मल ही है.
0: चलो मैं प्राउडली घर जाके बोल सकता हूँ अपनी बीवी को, मैं भाई नॉर्मल नो हैंड्स प्रूव.
1: ये सब करते हैं.
0: बट यहाँ पे और कौन कौन ये चीज दोहराता है, डू लेट अस नो. अभी तो आपको देखो कॉन्फिडेंस भी आ गया थोड़ा कि हाँ कुछ कुछ सीक्रेट जो है चीजें बता देनी चाहिए.
1: अगर इनमें से आपने कभी कुछ ट्राई किया तो वो भी मैसेज करके बताओ यहाँ पे 5599
0: 5599 पे.

अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। जी हाँ, आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आप बस बने रहिए, मैं 3 बजे तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद सैंडी कॉफी ब्रेक में आपका इंतजार करेगी एंड उसके बाद रुजबे उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। बट यस, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग इवेंट इवनिंग फॉर श्योर। अभी शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने से, बट तब तक के लिए आप बने रहिए बिकॉज कुछ ऑफर्स भी देने हैं। यानी कि राहत फतेह अली खान की मैं टेक्स्ट मैसेज का वेट करूंगा, जहां पे भेजने से आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो यस, कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे और आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। उस ड्रॉ से आप लकी हुए तो ऑफकोर्स डबल पास जीत सकते हैं उनके इवेंट जो 25th को हो रहा है, 25th of July। तो यस, बात करेंगे उसके बारे में, बट अभी के लिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना। बचाओ क्या?

0: वेल अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ट्रैवल करने वाली जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एयरलाइंस ने ये फैसला किया है कि अक्टूबर 2026 से दो ट्रांस तस्मान रूट्स पे अपनी जो सर्विस है उसे बंद की जाएगी और कंपनी का ये कहना है कि इन रूट्स पर पैसेंजर डिमांड उतनी मजबूत नहीं है जितनी उम्मीद की गई थी। उसी वजह से इसके साथ फ्यूल जो है वो भी प्राइस बढ़ती दिख रही है और उसके चार्जेस जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से उनको ये चीज़ डिसीजन लेना पड़ रहा है। बट यस, एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस को ऑपरेशनल कॉस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कंपनीज उन्हें उन्हीं रूट्स पर फोकस कर रही हैं जहां डिमांड ज़्यादा है और ऑपरेशंस ज़्यादा सस्टेनेबल है। हालांकि ट्रैवलर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर ये है कि एयरलाइन एक नया रूट शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ पॉपुलर रूट्स पर फ्लाइट की जो नंबर्स हैं उन पर भी बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद है कि पैसेंजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी और ज़्यादा ट्रैवल ऑप्शंस मिल सके। ऐसे इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स उनका मानना है कि ये फैसला एयरलाइंस के नेटवर्क को और भी मजबूत स्ट्रांग बनाने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो पैसेंजर्स की इन बंद होने वाली रूट्स का इस्तेमाल करते थे। उन्हें अब अल्टरनेटिव फ्लाइट्स और कनेक्टिंग सर्विसेज का सहारा लेना पड़ सकता है। सो फिलहाल ये बदलाव अक्टूबर से लागू होंगे और जो अफेक्टेड पैसेंजर्स हैं उनको उनकी बुकिंग ऑप्शंस के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी प्री प्लान करके बुकिंग किया होगा। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS, दैट्स 0800-478-686। लिमिटेड spaces.
5: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Bunnings has lowest prices nailed.
8: Like CRC 420mm 556 multipurpose, just $9.57. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
9: Bunnings Warehouse. Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
11: Sorry about that.
10: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.

0: या रिप्ले।
1: वेल ये रहे तीन सवाल जो आपको मौका देगा ड्रॉ में शामिल होने का, अगर आपने सही जवाब दिए तो, और फिर अगर आप लकी हुए तो आप जीत सकते हैं डबल पास फॉर द शो जो 25th ऑफ जुलाई को होने वाला है राहत फतेह अली खान के शो का। वेल इस पहला सवाल ये है दैट उन्होंने राहत फतेह अली खान जी ने अपना पहली जो स्टेज परफॉर्मेंस थी पब्लिकली वो कौन सी ईयर में दी थी। जी हाँ देखो अभी आपके पास टाइम है तो यू कैन डेफिनेटली सर्च इट आउट, बट यस पहला जो इन्होंने शो दिया था वो कब दिया था आप मुझे भेज सकते हैं। सेकंड इज उनके रिलेटिव्स में सबसे बड़े लेजेंडरी कौन है, जी हाँ उनका नाम भी आप भेज दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो पहला प्लेबैक था म्यूजिकली फॉर बॉलीवुड इंडिया में तो वो कौन सा गाना था आप मुझे बता सकते हैं। 5599 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिए एंड मेक श्योर कि आप RFK भी लिख दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो। बढ़िया इनका शो होने जा रहा है 25th ऑफ जुलाई द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में, जिसे प्रेजेंट किया जा रहा है JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन। जी हाँ टिकट जो है आप drytickets.com पर जाके ले सकते हैं और आप इस बहुत ही बढ़िया सुनहरे मौके को अवेल करिए और जाना डेफिनेटली ना भूलिएगा बिकॉज ये शो जो है वन ऑफ अ काइंड है एंड मैं खुद पर्सनली एज अ सिंगर बोल रहा हूँ कि दिस इज हाईली रिकमेंडेबल।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

Well, कभी आपने सनराइज का व्यू देखा है? क्या आपने नई फ्रेंडशिप्स बनाई है, लाइक नए दोस्तों से मिले हो या फिर नई दोस्ती की है? क्या आप एक ऐसे रोड ट्रिप पे गए हो जहां पे आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट चल रही हो या फिर रोड ट्रिप वाली प्लेलिस्ट चल रही हो, बहुत सारा खाना और ऑफ कोर्स एंडलेस लाफ। वेल यस, मैं कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टोरी की बात कर रहा हूं जो आपकी अपनी हो सकती है। जी हाँ, और ये स्टोरी कब कैसे पॉसिबल हो सकती है? इट कुड बी द ईस्टर, इट कुड बी योर ईस्टर 2027। सो यस, ऐसी अपडेट के लिए मोर आप बस स्टे ट्यून्ड रहिए, बिकॉज हम जल्द ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे।

0: अब देखिए रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक स्टेशंस और प्लेलिस्ट जो है हम आपके लिए रेडी करते हैं ताकि आप उन्हें कभी भी कहीं भी सुन सकें रोवा ऐप के जरिए। जी हाँ, आपको कोई बस लॉगिन करने की जरूरत है, आपको कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो यस हम रिवाइंड, जहाँ पे आप सुन सकते हैं रोवा के एक नंबर, रोवा के सबसे नंबर वन म्यूजिक स्टेशन बॉलीवुड के गोल्डन एरा 60s 70s के गाने, हम के 80s दशक के गाने जो आप रोवा के जरिए सुन सकते हैं। नंबर टू स्टेशन है ये जहाँ पे 80s दशक के गाने आप सुन सकते हैं, साथ में फीजी भजन या फिर फीजी कीर्तन जो 24/7 चलने वाला दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म है, आप इसे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। चढ़ती कला पंजाबी हिट्स ये भी वहाँ पे मौजूद है जिसे आप सुन सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी हु इज कमिंग ऑन 25th, उनके गाने यानी कि राहत फतेह अली खान के गाने भी यहाँ पे मौजूद है जिसे आप सुन सकते हैं, सूफी हो या कवाली, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस रो ऐप के जरिए। साथ ही आप कुछ आपको अपडेट दे देता हूँ रिगार्डिंग जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आज आखिरी दिन है, एक ऑकलैंड फीजी इलेक्शन वोटर रजिस्ट्रेशन चल रही है, शाम को 8 बजे तक ही रहेगी, 12 बजे शुरू हुआ था, मैंगरे सेंट्रल पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरे में। जी हाँ, और उसके बाद सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो है वो 4 जुलाई तक चलने वाला है, आप उसे भी कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशन है, जैसे कि आज 26 है तो मैंगरे सेंट्रल पार्क में होने वाली है आज, जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद 27 एंड 28 को होगी ते फनाओ उताही जो कि 37 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फेयरफील्ड में है, और उसके बाद ऑफकोर्स जो नई डेट आएगी तो हम आपको तब बताएंगे। फिर उसके बाद ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की तरफ से मंथली जो रामायण कथा होती है वो होने जा रही है आज ही के दिन शाम के 7:15 बजे, आप जा सकते हैं ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्क्रिप्टन स्ट्रीट मैंगरे में, वहाँ पर प्रसाद एंड फूड विल बी provided as well and everyone is invited. New Zealand Art and Culture Charitable Trust की तरफ से आप सभी को, सभी भक्तों को invite किया जाता है for श्री राम लीला में। आप अगर stall लगाना चाहते हैं उसमें तो आप call कर सकते हैं Master Ashok को 021-179-5459। ये 8 अगस्त को होने वाला है जय श्री राम के तहत, और ऑफ कोर्स मोर डिटेल्स जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। लंच बॉक्स
1: विद केतन, इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम 80s के रेट्रो गाने।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: Well, एक नई बहस छिड़ चुकी है टेक दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर एक बार फिर से. जी हाँ, एक नए साइंटिफिक रिव्यू ने पिछले साल की गई एक बड़ी ब्रेक थ्रू क्लेम पर सवाल उठाया है. रिव्यू के मुताबिक रिसर्च में देखा गया है कि रिजल्ट उतने मजबूत नहीं लगते जितना पहले बताया गया था, और जिस सिग्नल को बड़ी डिस्कवरी कहा जा रहा था वो शायद रैंडम नॉइज भी हो सकती है. हालांकि रिसर्च काम जो टीम है उन्होंने अपने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल टेस्टिंग की स्टेज पर है और लगातार डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है. क्वांटम कंप्यूटिंग को फ्यूचर का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक माना जा रहा है. फिलहाल विवाद इस बात पर है कि क्या ये ब्रेक थ्रू वाकई इतनी बड़ी है जितना दावा किया जा रहा है या नहीं. सो यस, दैट्स गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग.

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. हम मिलेंगे आपसे मंडे को सुबह, ऑफ कोर्स सुबह नहीं, फिर दिन के 12 से 3 बजे के बीच. और तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, अच्छे से स्पेंड करिए अपने टाइम फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड मेक श्योर आप वीकेंड को अच्छे से उसको यूज करें एंड मेमोरीज बनाए. सो यस, गो आउट, स्पेंड सम टाइम. वेदर थोड़ा है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा वेदर का भी चेक करिए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, वहाँ पे वेदर कैसा रहने वाला, तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. बट मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू ऑन मंडे 12 टू 3 नए लंच बॉक्स टॉपिक लेके. तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड हैप्पी वीकेंड.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: suit you. Conditions apply. Midwinter Meltdown on now at No Leeming.
1: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Strong winds are forecast to keep hitting parts of the country for much of the day. Met Services' Heather Keats says people can expect things to ease later tonight.
4: It's the wind today that's been causing all sorts of problems. It's Taranaki, Wellington and parts of Marlborough. Be mindful of the gusts. You can still expect winds of up to 130 k's through till 7 tonight.
3: Drivers along State Highway 2 in Wellington are being advised to watch out for flooding and falling rocks. The road is impacted in both directions between Nauranga Gorge and Altia Keys southbound and just before Petone northbound. A 21-year-old man has been charged with ramming a police car in West Auckland. The man fled officers after he was seen driving with no lights on. After a pursuit across the city, the vehicle was eventually brought to a halt after being spiked in Drury. And actress Amy Adams says she once helped to save a person's life. Her time playing a registered nurse on a TV series came in handy when her family came across a man who had been stabbed in California. Adams says she urged the man to remain calm while both her and her father applied pressure to the wound with their beach towels. To sport, it was all going New Zealand's way in the heat on day one of the third cricket test at Trent Bridge. Close to stumps, it was 361 for two. England then grabbed two quick wickets with the second new ball. Play resumes at 10 tonight and it will be hot again. And to football updates brought to you by Hisense, halftime in the two late games at the World Cup. Turkey leads the USA 2-1. There's no score in the Australia Paraguay game.
2: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoy, and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.2 डिग्रीज एंड आज को ओवरनाइट चिली वेदर 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. ठंडी हवाएं भी आज, तो अपना ध्यान रखिएगा. लेकिन वीकेंड लुक्स गुड एक्चुअली, वीकेंड लुक्स सनी एंड ब्राइट सो फार. सनसेट आज का 5:14 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
6: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
5: A very, very good afternoon to you. Coffee break आपके लिए शुरू हो चुका है. You're humming along with Sandy और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे coffee break में रहने वाला है. So कैसे हैं आप और आपका डे आज का so far कैसा जा रहा है? It's been windy and cloudy, a bit rainy weather as well सुबह से. कभी कभी बीच में ऐसा धूप अपनी शक्ल दिखाती है, but mostly weather थोड़ा ऐसा ही है आज का. लेकिन या कल से जैसे कि वेदर अपडेट में आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट वेदर आप ज़रूर एक्सपीरियंस करने वाले हैं. यू नो, वैसे जो आज का दिन है, आज का जो दिन है ये वर्ल्ड ड्रग डे भी अवेयरनेस के लिए आज का दिन बोला जाता है. जो ड्रग अब्यूज़ है बेसिकली, इसकी अवेयरनेस के लिए जो दिन है आज का मनाया जाता है. ऑल्सो बहुत सारी जगह पर आज का जो डे है क्रीम टी डे मनाया जाता है. क्रीम टी क्या होती है? चाय तो समझ में आती है, चाय अलग टी अलग, ये तो समझ में आता है. लेकिन क्रीम टी क्या हुआ? क्रीम टी बेसिकली क्या है ना कि एक ट्रेडिशनल ब्रिटिश लाइट मील या स्नैक है जिसमें पॉट ऑफ टी होती है सर्व्ड विद वार्म फ्रेशली बेक्ड स्कोन्स या फिर यू नो क्लोटेड क्रीम होती है, फ्रूट जैम होता है उसमें. तो बेसिकली वो जो आप देखते हैं ना कि पॉट ऑफ टी के साथ कुछ ऐसा खाने पीने का रखा होता है, स्कोन्स वगैरह जैम वो सब रखा होता है, बेसिकली उसे हम कहते हैं क्रीम टी. आज वो वाला डे है. अगर आपका मन कर रहा है सेलिब्रेट करने का, यू कैन गो फॉर इट. आपका हफ्ता कैसा गया पूरा का पूरा, वो भी आप यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं. 5599

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वेदर की वजह से आज बहुत कुछ हुआ है, फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, ट्रीज काफी डाउन हुए हैं, रूफ डैमेज हुई है कुछ जगह पे, तो पावरफुल विंड्स जो आज हुई है जिसमें ट्रेवल डिस्ट्रप्शंस काफी हुए हैं। सेवरल डोमेस्टिक फ्लाइट्स एक्चुअली में आज कैंसिल हुई और डिले भी हुई बिकॉज डेंजरस विंड कंडीशंस रही थी। एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया टू हंड्रेड्स ऑफ वेदर रिलेटेड कॉल आउट्स जिसमें फॉलन ट्रीज थे, डैमेज रूफ थी एंड डेब्रीज ब्लॉकिंग द रोड्स एज वेल। वर्स्ट हिट एरियाज जो थे स्ट्रॉन्ग इनफ टू टॉपल द ट्रीज, डैमेज पावर लाइन्स एंड लीव सम होम्स विद रूफ डैमेज एज वेल। सो काफ़ी क्रेजी वेदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आज एक्सपीरियंस करने को मिला, स्पेशली वेलिंगटन में। एक्चुअली में जो ऐसा वेदर है ये बहुत ज़्यादा रहा। कुछ आपके एरिया में ऐसा हुआ क्या, आपके एरिया में कोई रिपोर्ट हुआ कुछ ऐसा हुआ? वेल, अगर आपके एरिया में लाइट गई है, ऐसे वेदर में यहाँ पे होता है कि कभी कभी लाइट भी बहुत सारी जगह पे ऑफ हो जाती है। यू नो, यहाँ पे लाइट का जाना बहुत अनयूजुअल माना जाता है बिकॉज काफ़ी कंट्रीज़ में, साउथ एशियन काफ़ी कंट्रीज़ में लाइट का जाना इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, लाइट का आना इज़ वेरी अनयूजुअल, लाइट का जाना इज़ वेरी नॉर्मल। अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप उस समय पर थोड़ा ऐसा ही होता था। और इनफैक्ट जब लाइट आती थी तो सब ऐसा चिल्ला के बोलते थे आ गई आ गई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की है तो अभी यहाँ पर शेयर करके बता सकते हैं। 5599 इज़ द नंबर।

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा, सुपर पॉडकास्ट हमने आपके लिए गाइस यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और ये जो पॉडकास्ट है ना, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है अबाउट AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में है एंड एवरी डे की लाइफ में है। रोज़ की ज़िंदगी में ना, आप कोई भी काम उठा लो, किसी न किसी चीज़ में AI जो है ये डेफिनेटली इन्वॉल्व है। सो वाई नॉट लर्न अबाउट इट, वाई नॉट उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो। इसीलिए ये एक अनफिल्टर्ड एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। Why unfiltered? Because इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताई है जो आपके लिए थ्रेट भी है एंड जो आपके लिए फ़ायदे के लिए भी है। एंड AI आपका काम कैसे आसान कर सकता है, इसके भी कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स इसमें बताए गए हैं। AI से क्या डरने की हमें ज़रूरत है या फिर AI हमें हेल्प भी कर सकता है, ये सारी बातें एक्चुअली में हमने इस पॉडकास्ट में की है। आपकी ईमेल से लेके आपके कुछ काम, आपका एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल, आपने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सेव करके रखी है, स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लेकिन वो आपके स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट पड़े ही हुए हैं। तो वो जो स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर है वो आप AI में डाल के वो काम सारे के सारे आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर किया गया है। सो हमने AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ एक्चुअली में बातें की है एंड इन्होंने हमें डिटेल में समझाया, इनफैक्ट इन्होंने बेसिक से समझाया कि AI है क्या, न्यूजीलैंड में AI को अडेप्ट करना स्लो है फास्ट है, उसके बारे में अच्छे से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सो इट्स वेरी इंसाइटफुल एपिसोड। मैं तो कहती हूँ ये एपिसोड आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो आपको जब भी टाइम मिले इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनेगा, लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप ड्राइव लेके भेजते हैं 5599 पर, अदरवाइज रोवा पे जाइएगा, हम पे जाइए, अनफिल्टर विद सैंडी एंड रूज़ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप पे, बिकॉज लेटेस्ट एपिसोड्स जो है ये बिल्कुल टॉप पे आते हैं, तो ये एपिसोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्पॉटिफाई अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम हैं, अनफिल्टर विद सैंडी एंड रूज़ पे सर्च कीजिए। अगर आप एप्पल यूज़र हैं, एप्पल म्यूज़िक में भी हमारा पॉडकास्ट है, अमेज़ॉन में भी हमारा पॉडकास्ट है, सो वी आर एवरीवेयर। सो इसीलिए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जाइएगा और इस पॉडकास्ट को सुनेगा एंड बताइएगा, बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।

वेल ओवर द वीकेंड क्या करने वाले हैं ये रिकमेंडेशंस आज आपके साथ हम शेयर भी करने वाले हैं ड्राइव शो में. बाय द वे आपको बताएंगे कि क्या क्या आप देख सकते हैं ओवर द वीकेंड एंड ऑल्सो मूवीज़ के बारे में. बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी है, ये भी आप जाके इन्जॉय कर सकते हैं. मैं वापस आऊँगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है दिस विल बी योर मोस्ट प्रॉबेबली द लास्ट चांस टू गो एंड वॉच द मूवी. सो ज़रूर जाएगा. पब्लिक डिमांड के साथ ये मूवी वापस सिनेमाज में आई है, सो आई थिंक देन आप इसको जस्टिफाई ज़रूर कीजिए. इमेजिन कीजिए ना, एक ऐसी मूवी है ये, ऑनलाइन या कहीं पर भी एक भी नेगेटिव रिव्यू इस मूवी का नहीं है. हमेशा मूवी के ना मिक्स रिव्यूज़ होते हैं, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है. अभी तक मैंने इस मूवी का एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं पढ़ा है. सो आप भी जाइएगा ज़रूर इस मास्टरपीस को सिनेमाज में देख के आइएगा.

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

फुटबॉल की बातें करते हैं तो फीफा के रिजल्ट्स में आज जापान और स्वीडन के बीच में जो मैच था ये ड्रॉ हुआ 1-1 के साथ। ट्यूनिसिया एंड नीदरलैंड्स के बीच में नीदरलैंड्स की 3-1 के साथ आज जीत हुई थी। वैसे आज और भी ढेर सारे मैचेस हैं जिसके बारे में अपडेट्स जो है जो मैच हुए हैं इसके और भी अपडेट्स वैसे आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कौन सी टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं 5599।

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: tablets from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: 4:01 हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है सो फार? ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. रुजबे के साथ मेरे साथ यहाँ पे बस थोड़ी देर में हो जाएगा. पहले आप बताइएगा कि आपका डे कैसा रहा, आपका हफ्ता पूरा का पूरा एक्चुअली में कैसा रहा. फीफा वर्ल्ड कप अगर इस समय पर आप देख रहे हैं तो इसके मैचेस के अपडेट्स आपने मिस आउट की है, ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ. क्या क्या सो फार हुआ है. जापान स्वीडन के बीच में 1-1 के साथ ड्रॉ हुआ आज. टूनिसिया एंड नीदरलैंड्स के बीच में नीदरलैंड्स की 3-1 के साथ जीत हुई. एंड यूएसए की आज हार हुई टर्कियो एंड यूएसए के बीच में टर्कियो की 3-2 के साथ एक्चुअली में जीत हुई. एंड अभी पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच है ये पेंडिंग है. ओवर द वीकेंड भी एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच जो है ये होने वाले हैं. सो लेट्स सी उसमें क्या रहता है. सो आप भी बताइएगा कि अगर आप मैच देख रहे हैं तो किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं.
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
3: Shaadi kar sakte hain.
4: Queen Victoria
3: ki. Queen Victoria ki tarah kaise dikh sakti hain aap? Aap to waise hi lagengi. Malika Tilfareb.

0: gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
6: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
7: Absolutely everything is on sale at Freedom. Last chance to get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery. Hurry, sale must end Tuesday. Only at Freedom.
8: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
9: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
13: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
14: Drive Show sun rahe hain aap, 4:13 hue hain with Sandy and Rusby. Hi Sandy, good afternoon.
15: A very very good afternoon. Kaise ho tum Rusby?
14: Main bahut badhiya hoon Sandy. How are you doing?
15: Good, good. Tumhara day, tumhara hafta kaisa gaya ye?
14: Hafta ekdam, hafta wasooli type gaya hai bhai.
15: Back to work tha na tumhara ye hafta?
14: Ji, back to work tha. Kafi acha tha waise ye week. The weather's not been that great, but it's okay. Abhi hopefully kal parso acha rehne wala hai.
15: Yeah, so far jo weather forecast hai yehi bata raha hai ki kal se एकदम ब्राइट सनी गुड डेज जो है, मतलब वेदर वाइज ये हमें दिखाई देने वाले हैं.
14: अच्छे दिन आ रहे हैं,
15: अच्छे दिन मौसम के हिसाब से.
14: आज बहुत तेज हवा है, लेकिन कल आई थिंक कल का दिन बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि कल आई थिंक टेम्परेचर नॉट गोइंग टू बी दैट लो एज वेल. सदरलीज का साथ होगा, लेकिन उसके बाद है ना ठंड बढ़ रही है. एक्चुअली संडे इज ऑल्सो डिसेंट. मंडे से ठंड है,
15: फुल ठंड है,
14: फुल ठंड होने वाली है भाई. वी आर इनटू जुलाई, मतलब वी आर इनटू लाइक पीक विंटर नाउ.
15: लाइक मुझे लगा था कि जून में पीक विंटर में आएंगे, लेकिन एक महीना लेट चल रहे हैं हम.
14: एक महीना लेट चल रहा है, हर जगह सब कुछ लेट ही चल रहा है अभी. एनीवे, आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन हम आपके लिए 5 बजे के बाद यहाँ पे लेकर आते हैं ये
1: कनेक्ट द डॉट्स.
14: कनेक्ट द डॉट्स में क्या होता है सैंडी, एक्सप्लेन कीजिए हमें.
15: सो कनेक्ट द डॉट्स बहुत इजी गेम है गाइस, जो कि 5 बजे के बाद आपके साथ हम खेलेंगे. इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कोई एक वर्ड बोलूंगी, उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड रुजवे को बोलना है और जो रुजवे बोलेगा उसके रिलेटेड कोई भी वर्ड मुझे बोलना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ हम,
14: एग्जाम्पल दे रहे हैं रुजवे,
15: जैसे मैंने बोला हम
14: 87.7
15: फ्रीक्वेंसी,
14: अच्छा 104.2
15: सिटी,
14: ओके सिटी नहीं है, गलत है ये.
15: अरे लेकिन या
14: ये तो गलत हो गया, 104.2 से कनेक्ट करना है आपको.
15: ओके 104.2 आई विल से साउथ ऑकलैंड.
14: अच्छा साउथ ऑकलैंड में सुनाई दे रहा है इसलिए बोल रहे हो आप,
15: मतलब सबसे अच्छा सुनाई हर जगह दे रहा है लेकिन सबसे अच्छा साउथ ऑकलैंड में.
14: अच्छा साउथ ऑकलैंड बोल दिया आपने.
15: yeah.
14: अच्छा साउथ ऑकलैंड बोला है तो मेरे से तो एक ही चीज बोली जाएगी उसके बाद,
15: जो भी तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी
14: वही ना, भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी यार, आपने निकाल दी
15: लिव इट. सो एनीवे गाइस इस वजह से या इस वजह से ये गेम होती है कि एक वर्ड के साथ कनेक्टिंग आपको दूसरा वर्ड, कैन बी एनीथिंग, कहीं से भी शुरू हो के आप कहीं पर भी जा सकते हैं. ये गेम
14: पिछले हफ्ते कंपटीशन किया था ना दो लोगों के बीच में, बहुत अच्छा गया था वो.
15: या सो ये 5 बजे के बाद आपके लिए रहेगा. एंड आल्सो आज राहत फतेह अली खान के लिए किन्होंने पास जीते हैं, हमारे जो विनर्स हैं इनका नाम अनाउंस करने का भी वक्त आ चुका है. डिफरेंट शोज ने विनर्स का नाम निकाला है तो वो नाम भी हम यहाँ पे आज अनाउंस करेंगे.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Accurate traffic.
5: Would you trade in your house?
6: Showers for Auckland overnight. Gale force southwesters easing. A low of 8 degrees on the northern. Reduced speed limits and lane reductions might be needed on the Harbour Bridge. We've got on the northwestern reports of a crash around St Luke's affecting westbound traffic. The southern is heavy northbound from Princes Street to Green Lane and south from Newmarket to Sylvia Park. And strong wind warning for Mangere Bridge.
5: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
8: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
10: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
11: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
10: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
11: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
12: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week only in the Mobil NZ app. Let's go! For a limited time only, T's and C's apply.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
14: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
13: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
14: Available at selected branches. T's and C's apply.
15: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
16: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
17: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे एक से गाने तो लेकर आते हैं, प्लस इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी आपके लिए हम ले आते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने आपके दोस्त को, कली को, किसको भी ऐसा कोई आइडिया दिया हो और वो तभी उसको स्ट्रांगली उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कर सकते, और फिर कुछ घंटे बाद वही सेम आइडिया तुम्हें फिर से चेपे
4: कि अब ये करने वाली हूँ मैं, ये करने वाला हूं।
17: कि ये ऐसा करना चाहिए ना।
4: Oh my God, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा?
17: ये ऐसा बहुत सुनहरा सुनहरा लग रहा है। बट आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है कभी जहाँ पे आपने आपके दोस्त के साथ, कलीग के साथ, किसी के साथ भी एक कोई आइडिया शेयर किया हो और वो टाइम पे उसने उसको एकदम ही स्ट्रॉन्ग वे में बोला होगा, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, और फिर बाद में
4: खुद ही वो किया,
17: हाँ खुद ही कुछ ही देर में वो किया, या फिर थोड़ी मतलब ना जब भी
4: उसके बारे में प्लानिंग की,
17: या उसके बारे में प्लानिंग किया, वो कर दिया उसने।
4: या
17: हाय बोलिए सर, कैसे हो आप?
18: कैसे आप लोग?
4: बढ़िया,
18: हम ठीक है, आप बताइए कैसे हो?
17: हम तो बहुत ही बढ़िया है। वीकेंड जो आ गया,
18: वीकेंड जो आ गया, या वो तो बहुत बढ़िया दिन है यार, फेवरेट डे है मेरा फ्राइडे।
4: हाँ नाइस नाइस। तो
18: मैं तो कहता हूँ कि वीक स्टार्ट ही मंडे से हो और जो सेकंड डे फ्राइडे ही हो सीधा,
17: ऐसा बोलते हैं क्या? तो फिर उस फ्राइडे का मजा नहीं रहेगा ना फिर?
4: यही तो फीलिंग है ना अभी फ्राइडे की,
18: यार नहीं इसको शॉर्ट कर दो और थोड़ा।
4: सही है। तो बताइए आपके साथ कभी हुआ है?

0: पेरेंट्स के साथ जब भी मैं कोई हॉलीडे का प्लान बोलती हूँ, वो बोले नहीं तुम्हें जब देखो घूमने क्या है, ये है वो है, और फिर खुद ही बोलेंगे मैंने वो चेक किया गूगल पे, ये जगह अच्छी है वहीं पर जाने के लिए। डिक्लाइन करके क्यों अपने फ्रेंड्स को, वी हैड दिस ट्रिप एंड मैं, हमने बोला किसी को मत बताना, सब कुछ कैंसिल किया, और मेरे पापा अपने फ्रेंड को बता रहे हाँ जी हम यहाँ पर जा रहे हैं, लाइक ये कब डिसाइड हुआ,
1: हमें तो मना किया और खुद
2: वो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का ना वो तो यही है, इनहेरिट वो है कि वो पहली चीज जो तुम बोलो उसको पहले मना ही करेंगे,
1: या वो पहले ना ही आती है,
2: बाद में फिर वो लोग सोचेंगे और बोलेंगे कि हाँ नहीं एक्चुअली अब ये बड़े हो गए हैं और ये जिम्मेदार भी है तो इनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए।
0: फिर सबसे ज्यादा एंजॉय भी वही करते हैं वो हॉलीडेज पे जाके, फिर बोलेंगे हाँ हाँ, पर जैसे ही हॉलीडे का आइडिया आएगा तभी पहले छोड़ो कहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा, फिर जब हॉलीडे पे तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे, हम लाइक देखेंगे जब मैं ये आइडिया लेके आऊंगी।
2: या
1: सही है,
2: थैंक यू अर्शदीप, थैंक्स सो मच यार,
1: थैंक यू अर्श। या तो तुम्हारे साथ हुआ है कभी रुजबे?
2: मेरे साथ अभी हुआ ना आज।
1: अरे वो तो छोटी सी चीज हुई है ना,
2: अभी तो हुआ है ये।
1: सो ही इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, तो क्या हुआ कि मैंने इसके साथ शेयर किया रुजबे के साथ कि जो मेरा नेफ्यू है ना उसके बारे में ऐसा रिपोर्ट आई मेरे को कि मतलब मेरी सिस्टर ने बताया कि इज वेरी गुड इन पजल्स स्कूल में,
2: पहेलियां अच्छे से बुझाता है, मेरे को लग रहा है सैंडी ने उसके साथ बचपन से
1: जम रहेंगे। Anyway, so, रुजबे ने बोला तो उसको पजल्स लाके देनी चाहिए, तो मैंने बोला नहीं यार अगर उसको पजल्स लाके देंगे ना तो वो स्कूल में ही लुक फॉरवर्ड की मतलब वहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे पजल्स पड़ी होती है, बिजी रहता है वहाँ पे, तो अच्छी बात है ना वहाँ पे, मतलब चाइल्ड केयर में आई मीन। एंड अभी मेरे मुंह से ऐसा निकला कि यार मेरे को लगता है ना पजल्स लेके आनी चाहिए उसके लिए, तो फिर से कह रहे ये क्या है?
2: अभी मैं बोला तभी मेरे को झाप दिया, बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि फिर मेरे को एकदम एक्सप्लेन भी किया सैंडी ने कि नहीं फिर वो कुछ लुक फॉरवर्ड करता है ना फिर स्कूल जाने के लिए, उसको जाना होता है
1: सेम चीजें नहीं लेके लेके रख सकते।
2: मैंने बोला अच्छा हाँ ओके अच्छा ऐसा होता होगा, हाँ सही है ओके। फिर एक घंटे में उसको डाइजेस्ट हुआ वो थॉट, बोलती कि नहीं मैं लेकर ही आती हूँ शायद से।
1: एनीवे गाइस, आपके साथ कभी हुआ है ऐसे और आपका क्या व्यू है इसके बारे में, क्या स्कूल में चीजें या चाइल्ड केयर में चीजें डिफरेंट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू घर, मतलब घर पे सेम चीजें होनी चाहिए? हाँ तो तुम नहीं करते क्या?
2: पॉइंट है, कर लो।
1: सेम चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इफ यू आर अ पेरेंट यू द बेटर पर्सन टू आंसर दिस, सो बताइए
2: कि बच्चों को खरीद के। मेरे को एक्चुअली जब आपने मेरे को रैशनल दिया ना वो चीज का कि अरे वो वहाँ पे स्कूल में है तो यू नो वहाँ पे एक्साइटमेंट होना चाहिए,
1: एक्साइटमेंट होता
2: है, तो मेरे को वो बहुत रैशनल लगा, मेरे को
1: मुझे
2: लगा
1: भी सही लग रहा है वैसे वो बट एक मैसेज आया है, हाय सैंडी हैव यू ट्राइड आइसक्रीम सैंडविच विद सॉल्टेड पोटैटो चिप्स?
2: यस आई हैव ट्राइड। सैंडी को क्यों पूछा ये, लेकिन एक्सक्यूज मी मैं कहाँ पे, मैं क्या इनविजिबल हूँ क्या यहाँ पे?
1: आइसक्रीम सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच क्या होता है?
2: नहीं नहीं, हैव यू ट्राइड आइसक्रीम
1: सैंडविच विद सॉल्टेड पोटैटो चिप्स, विद आइसक्रीम के ऊपर पोटैटो चिप्स?
2: तो बेसिकली आपने से दो पोटैटो चिप्स के बीच में आइसक्रीम डाल के खाया क्या कभी?
1: नहीं।
2: अरे बहुत बाप लगता है। मैंने तो अलग अलग चीजों के साथ आइसक्रीम करके कॉम्बो करके खाया, अलग कॉम्बो के साथ अलग खाया। मुझे ऑनेस्टली बेस्ट मेरा फेवरेट क्या मालूम है,
1: ये मेरे को समझ में आया इन्होंने क्यों पूछा, इन्होंने कल या आज सुना, आज इन्होंने लंच बॉक्स सुना होगा।
2: लंच बॉक्स में क्या हुआ आज?
1: तो लंच बॉक्स में केतन के साथ में गई थी ऑन एयर और केतन ने बातें की थी इस चीज़ के बारे में कि वियर्ड कॉम्बिनेशंस जो आप खाते हो, तो मैंने वहाँ पे शेयर किया था कि सैंडविच जो है ये ब्रेड के ऊपर बटर लगा के बीच में जो नमकीन होता है ना एज इन की भुजिया, वो जो सी सेवैयाँ होती है जो वो डाल के मैंने एक बार कॉम्बिनेशन ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा।
2: सैंडविच में अंदर भुजिया?
1: हाँ, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के भुजिया डालो, भुजिया नॉट एज इन की वो वाला पकौड़े एज इन It's
2: नमकीन भुजा, भुजा मिक्स।
1: हाँ भुजा मिक्स।
2: हाँ ये तो ठीक है, नॉर्मल है ये।
1: हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वियर्ड है, लेकिन काफी लोगों ने ये ट्राई किया है।
2: नहीं नहीं बहुत सही है वो। मेरे को आपने क्या वो ट्राई किया है क्या, जो सॉफ्टी मिलती है ना, सॉफ्टी और चिप्स? अभी यार एक ब्रांड में मिलता है चिप्स जिसके बहुत फ्रेंच फ्राइज बहुत कॉमन, वो फ्रेंच फ्राइज विद दैट सॉफ्टी, ऐसा उसको ऐसा ऐसा करके डिप करके You have it like a thing.
1: मैंने कभी नहीं try किया ये, लेकिन that sounds interesting.
2: Bread sandwich in ice cream and potato chips.
1: हैं?
2: Bread sandwich in ice cream.
1: Bread को ice cream लगा के उसके ऊपर potato chips. ये कहने का मतलब है इनका.
2: अच्छा, wow.
1: ये sandwich है इनका कि bread के ऊपर ice cream and potato chips. Oh my god.

0: ये बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही डाइवर्स है ये कॉम्बिनेशन.
0: आई वुड से नो टू एक्स्ट्रा कार्ब्स यार, मतलब पोटैटो चिप्स इज इनफ कार्ब्स ऑलरेडी एंड आइसक्रीम आल्सो हैज इनफ.
1: अरे जो बिगड़ना है तो अच्छे से ही बिगड़ो ना खाके, मतलब क्या है उसमें तुम देखोगे.
0: पॉइंट है.

0: 4:39 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे टिंसल टाउन के बारे में बातें करते हैं, रुजबे तो ढेर सारी मूवीज आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो साल है 2026 इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, वेरी गुड मूवीज,
1: गुड
0: मूवीज आई विल से, बिकॉज
1: बॉलीवुड का कमबैक,
0: बॉलीवुड का कमबैक मुझे ये साल लग रहा है 2026। वैरायटी लग रही है मुझे सिनेमा में, मतलब सिनेमा में हमें इमोशनल से लेके एंटरटेनिंग, थ्रिलर, रियलिटी बेस्ड।
1: रीमेक कितने, मतलब रीमेक नहीं, अपने सीक्वल्स कितने आ रहे हैं ना,
0: सीक्वल्स भी तो कितने आ रहे हैं लाइक और एक्सपेरिमेंटल ईयर भी रहेगा, बिकॉज एक सीरीज के ऊपर जो मूवी है मिर्जापुर वो भी आने वाली है, वो भी इसी साल रिलीज होने वाली है।
1: यार एक और इंटरेस्टिंग मूवी मेरे को लग रही है ये, इसका टीजर आया है, प्रहार नाम
0: प्रहार,
1: है इसका, जिसमें राजकुमार राव एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इट लुक्स क्वाइट इंटेंस यार।
0: सो दिस इज बेस्ड अनदर मूवी व्हिच इज बेस्ड ऑन 26/11, 26/11 के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, और 26/11 के ऊपर जितनी भी अभी तक जो मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उसमें अलग अलग एरियाज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कहानी बताई गई है, कभी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, कभी हॉस्पिटल, कभी नर्सेज, कभी जो विक्टिम्स हैं उनकी कहानी भी। दिस साउंड्स लाइक अ बिट डिफरेंट एज वेल,
1: पोस्ट
0: 26/11 है ये, या तो उसके बाद
1: सुनना है थोड़ा,
0: या थोड़ा टीजर सुनते हैं उसके बाद में बात करते हैं।
1: होपफुली इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द रेडियो, बट या हियर यू गो।
2: योर ऑनर, पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, क्यों इतना पैसा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर। कुछ देर के लिए अपने आप को 26/11 की रात को इंस्पेक्टर गोविलकर की जगह रखकर देखिए, जिन्हें कसाब ने गोली मारी। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि गुस्सा भरा होगा गोविलकर साहब में, और फाइनली जब कसाब को निहत्ता पकड़ा गोविलकर साहब ने यह नहीं कहा कि गोली मारो इसे, खत्म करो जल्दी, नहीं, उन्होंने कहा याला मारू नका, हाँ एविडेंस आहे। गोविलकर साहब ने ऐसा क्यों किया, इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, इंडिया। और यही कारण है कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के रास्ते पे चलकर उसके गुनाहों की सजा देंगे हम। That's why, for the crime of waging war against India, I, Ujjwal Nikam, ask that Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
0: राजकुमार राव इज प्लेइंग उज्जवल निकम। सो उज्जवल निकम जो थे, जो है एक्चुअली में ये इंडियन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट मर्डर एंड टेररिज्म केसेस को हैंडल किया है रुजबे। इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था टू द राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग फील्ड ऑफ लॉ इन 2025। इन्होंने वैसे ही हेल्प्ड प्रोसिक्यूट सस्पेक्ट इन 93 बॉम्बे बॉम्बिंग्स एज वेल।
1: वाओ, और इस मूवी में आप जयदीप अलावत को तो देखेंगे, बट सिकंदर खैर भी इसमें रहने वाले हैं,
0: वो भी रहने वाले हैं। इनफैक्ट उज्जवल निकम ने ऑल्सो हेल्प किया था काफ़ी चीज़ों में, लाइक गुलशन कुमार मर्डर केस में, प्रमोद महाजन मर्डर केस में, एंड देन दिस मुंबई अटैक्स, या मुंबई अटैक्स में।
1: वाओ, दिस रियली लुक्स टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मूवी। इसका एक लास्ट बिट सुन लेते हैं। अच्छा, मेरे को लगा डायलॉग रहेगा, डायलॉग नहीं है, बट एनी वे साउंड ट्रैक भी इसका बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड 7 अगस्त को ये रिलीज होने वाली है,
0: जजमेंट डे
1: बोल रहे इसको। एनी वे यहाँ पे सैंडी, आपने मैसेज अब मांगे थे ना, पूछा था आपने, आपके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए एक सवाल था आपका ना।
0: पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं, बढ़िया, बोले इट्स गुड आइडिया टू लीव सम एक्टिविटीज एट डे केयर एज इट वर्क्स एज एन इंसेंटिव फॉर किड्स टू गो टू डे केयर, हाउएवर यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड देयर इंटरेस्ट एट होम।
1: तो अलग अलग टाइप के पजल, तो बेसिकली सैंडी के नेफ्यू है, उनको पजल करना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो मैंने पूछा था कि वो सेम चीजें क्या एक्टिविटीज घर पे रखनी चाहिए, बढ़िया, मेरे को लगता है जो पहली चीज मैंने शेयर की थी उसी पे वही सही है, तो सेम एक्टिविटीज घर पे नहीं होनी चाहिए,
1: तो दूसरे टाइप के पजल लेकर आओ ना।
0: या
1: ओके एनीवे अभी आपके लिए हम थ्रोबैक का एक गाना लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ और भी गाने होंगे और कुछ और भी बातें होंगी. क्या हो रहा है हमारे सुपर सिटी में, व्हाट्स हैपनिंग ओवर द वीकेंड, व्हाट्स योर प्लान, इसके बारे में आप अगर कुछ शेयर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो हमारे साथ यहाँ पे कॉल करके. वी हैव सम टाइम टुडे,
0: या यू कैन कॉल ऑन 0800 00, हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग
1: थिंग दैट यू आर डूइंग ओवर द वीकेंड? 0800 00 4866 इज द नंबर.
0: या फिर कुछ रेकमेंड आप करना चाहते हैं, तुम कुछ रेकमेंड करना चाहोगे रुजबे देखने के लिए?
1: क्या वीकेंड पे?
0: वीकेंड पे क्या देखना चाहिए?
1: वो ओ मतलब मूवी बोल रहे हो आप?
0: मूवी, सीरीज, एनीथिंग, या क्या देखना चाहिए?
1: मैं बोलूंगा कल का वेदर बहुत बढ़िया होने वाला है, थोड़ी ठंड भी होने वाली है, इट्स ओके. लेकिन सिटी में लाइट्स बहुत ब्यूटीफुल वो लगाया है वो लोगों ने,
0: विंटर लाइट्स. मैं एक सीरीज बताना चाहूंगी, मैंने रुजबे को भी सीरीज के बारे में बोला है. यू नो इफ यू वांट टू सिट एंड वॉच एपिसोड वाइज, एक छोटे छोटे एपिसोड आप खाना खाते समय कुछ लाइट हार्टेड सा देखना चाहते हैं, देयर इज दिस वन सीरीज लाइक फ्रेंड्स बेसिकली, द किंग ऑफ क्वींस. ये एक्चुअली में एक अमेरिकन सिटकॉम है, बहुत पुराना सिटकॉम है, एंड इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, फैमिली की कहानी है. तो अगर आप कभी ऐसा टाइम पास करने का मूड है, कोई आपको मूवी अगर आपको नहीं लगानी है, जैसे एक छोटा सा एपिसोड देखना है, यू कैन जस्ट वॉच द किंग ऑफ क्वींस.
1: द किंग ऑफ क्वींस. आप क्या देखने वाले हो, आप क्या करने वाले हो वीकेंड पे, हम आपसे जानना चाहेंगे. 0800 00 4866 इज द नंबर, गिव अस अ कॉल.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 11 degrees right now, 12.2 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 8 degrees tonight. Winds gusting 90 kilometers per hour in exposed places. Aur is shaam ko thodi bahut ease out ho sakti hai winds. 5:14 pe aaj hoga sunset. Kal ka din beautiful.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
1: Aaj hai 26/06/26. Very significant day today in history. Once in our lifetime, ye day hum aaj dekh payenge ye. ड्राइव शो आप सुन रहे हैं सैंडी और रुज़बे के साथ. आज 0800 004866 पे कॉल करें यार. आज मेरे को ना ऐसे नॉर्मल बात करनी है, टाइम पास बातें करनी है.
5: टाइम
1: पास बात करनी है. आप जस्ट कॉल करो यार 0800 004866. इफ यू हैव नेवर कॉल्ड बिफोर ऑन एयर, दिस इज योर चांस. गिव अस अ कॉल. दिस वी वांट फर्स्ट टाइम कॉलर्स टू गिव अस अ कॉल राइट नाउ.
5: 0800 हम पर. इट्स 0800 004866.
1: नो प्रेशर ऑफ आंसरिंग एनीथिंग और यू नो नो प्रेशर ऑफ लाइक ऐसा कुछ.
5: जस्ट हाई बोले वो आगे.
1: जस्ट हाई बोलो और फिर मेरे क्वेश्चन आंसर करो. ये बाद में बोलना चाहिए था मैंने. बट या बस उन्हें हाई बोलने के लिए कॉल करो. 0800 004866 कॉल कीजिए और सैंडी तब
5: कॉल कीजिए. और मैं आपको ये बता दूं कि ईस्टर 2027. यस, आपको वैसे अगले हफ्ते कुछ और भी हिंट देंगे इसके बारे में. ईस्टर 2027 में
1: क्या होने वाला
5: हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ.
1: अच्छा, जानेंगे हम और. लेकिन अभी हम इनसे बात करेंगे. हाय, गुड इवनिंग.
6: हाय, गुड इवनिंग.
1: क्या नाम है आपका?
5: गुड.
6: मेरा नाम इमरान है.
1: इमरान, कैसे हो इमरान आप?
6: बढ़िया बढ़िया. बहुत, आप लोग कैसे?
1: बहुत ही बढ़िया. इमरान, पहली बार कॉल कर रहे हो रेडियो पे कि नहीं? पहले से
5: आप पहले भी?
6: नहीं, I had called couple of days back as well.
1: अच्छा,
6: debate on tax, if you remember, right?
1: हाँ, टैक्स के बारे में बात किया ना. आज किस बारे में बात करना चाहोगे? What is your rant for the week?
6: Rant for the week, I would say the weather.
1: वेदर ना. क्या कहना चाहोगे वेदर के बारे में?
6: Yeah, it's been too on and off kind of, so not good for the kids. So we managed to escape our winter last time, so we traveled to India. But this time it is kind of hot and cold, so kids are still getting used to it.
1: So आपका ये पहला है, दूसरा विंटर ही है यहाँ पे या पहले आपने यहाँ पे विंटर, मतलब are you new migrant?
6: No, not really, but this would be like our first actual winter in our new place that we are in.
1: Oh, right. Okay.
6: Before this, it was all rental. So first full winter in our new place, quite well insulated as it's new, but फिर भी ठंडा तो लगता ही है.
1: जी, और कौन से एरिया में हो आप? मतलब ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ?
6: आई एम बेस्ड इन वेस्ट. वेस्ट
1: वेस्ट में ना. हाँ, वेस्ट में वैसे ठंड थोड़ी ज्यादा ही लगती है हमें. आपने हाँ बोलना चाहिए. आपसे भी बात करते हैं.
5: गुड, आप कैसे है?
7: बस बढ़िया चल रहा है एकदम.
5: और क्या नाम है आपका?
7: अश्विन बात कर रहे भाई.
1: अश्विन, सैंडी, अश्विन का नाम कैसे भूल सकते हो?
5: अच्छा, तुम्हें याद था क्या? ये देखो.
1: नहीं, अश्विन का आवाज दूर से आ रहा है थोड़ा, आवाज इसलिए ऐसा पहचान नहीं आया.
7: क्या
1: बोलो अश्विन, क्या बोलते हो?
7: बस
1: आपका क्या है आज का वीक का रेंट क्या है? व्हाट इज योर रेंट फॉर द वीक? किस बात से आप, मतलब यू नो, किस बात की भड़ास आप निकालना चाहोगे? कोई कुछ भी हो सकता है वो जो रेडियो पे बोल सको वैसा.
7: देखिए, बयान चुका है मेरा, फुटबॉल पे खेलना जाऊंगा. इसके बाद में चौका के बाद में होटल बियर ट्रेन के साथ मौज मस्ती करेंगे तो
5: अच्छा तो फुटबॉल आपका डे है फुटबॉल में वैसे हाँ वर्ल्ड कप में किसको फॉलो कर रहे हो आप मतलब किसको वो सपोर्ट कर रहे हो
7: मैनचेस्टर यूनाइटेड
1: अरे वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी खेल रहा है
5: मतलब यू मीन क्या नाम है मैनचेस्टर तो उसमें नहीं है तो इंग्लैंड को फॉलो कर रहे हो आप
1: आपका आवाज बहुत अटक रहा है आज यार
5: बहुत अटक रहा है आवाज
1: आपका आवाज आज यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी की तरह आ रहा है
5: तो आपका फेवरेट आपका फेवरेट प्लेयर कौन है
7: हेलो
1: हाँ जी
5: जी बताइए
7: मैं जो टीम के सपोर्ट कर रहा हूँ ब्राजील है वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ क्वालिफाई का मेरा टीम जो है ब्राजील
5: ओके योर फेवरेट इज ब्राजील
1: सेम पिंच मैं भी बिल्कुल भी फुटबॉल फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन मैंने भी ब्राजील ही चूज किया क्योंकि बचपन में हम लोग वो सुनते थे गाना
5: ब्राजील टर्की ने वैसे यूएसए को आज हराया है 3-2 के साथ
1: अच्छा क्या बात है
7: वैसे लेटेस्ट आउट हो गया है बिकॉज़ वो ध्यान तो नहीं जीत पाए कोई हालत है किसके ध्यान तो उसके 3-1 गई में मैं तो उसका लेटेस्ट था बट अगर वो ड्रॉ करेंगे तब आगे जाएंगे तब जाएंगे तो भी गए बट पर मुश्किल है क्योंकि वो बहुत हार्ड टीम
1: न्यूजीलैंड
5: के बारे में बात कर रहे हो कल है ना न्यूजीलैंड का मैच
7: कल मैच है
1: न्यूजीलैंड का मैच है ठीक है थैंक यू अश्विन
5: अश्विन
1: आज आपका आवाज ना अटक अटक के आ रहा है मतलब तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ रहा है अच्छा तो आज हम आपके साथ वैसे थोड़ी देर में यहाँ पे कनेक्ट द डॉट्स खेलने वाले हैं
5: गेम भी हम खेलेंगे एंड बाय द वे रुज़बे कल जो मैचेस होने वाले हैं नॉर्वे फ्रांस का होगा कल सेनेगल इराक का भी होने वाला है सो न्यूजीलैंड का अगेंस्ट बेल्जियम में होने वाला है
1: ये तो टफ वन होगा
5: एंड देन इजिप्ट एंड ईरान का मैच होगा कल
1: तो और भी अपडेट्स आपको मिलेंगे ओनली ऑन हम
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: सैंडी की फेवरेट मूवी भूत बंगला से हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गाना, राम जी आके भला करेंगे।
1: जो तुमने बोला ना, जो एंड में वो हंसी, वो मेरी हंसी थी उसके ऊपर।
0: कनेक्ट द डॉट्स, टाइम फॉर अस टू प्ले कनेक्ट द डॉट्स, जहाँ पे अभी हमें दो कॉलर चाहिए यहाँ पे 0800-004-866 एंड दिस टाइम वी नीड यू बिकॉज वी वांट टू प्ले अ गेम विद यू। बहुत ही सिंपल ये गेम है।
1: सो गेम बताने से पहले रूज बे जस्ट आपको बता देती हूँ कि वेलिंगटन से अगर आप सुन रहे हैं तो वेलिंगटन में वैसे इलेक्ट्रिसिटी वेलिंगटन इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्होंने वार्निंग दी है कस्टमर्स को टू बी प्रिपेयर फॉर फर्दर पावर कट, बिकॉज बहुत सारे पावर कट हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ 4,000 कस्टमर्स अक्रॉस द वेलिंगटन रीजन आर स्टिल विदाउट पावर।
0: ओह माय गॉड,
1: या सो
0: ये वेदर के कारण हुआ है क्या?
1: वेदर के कारण बहुत सारी फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई है एंड या सो बहुत सारी जगह पे एक्चुअली डैमेज भी हुआ है। ओह या मोस्ट फ्लाइट्स
0: आउटसाइड आउट ऑफ वेलिंगटन कैंसिल्ड।
1: या
0: ओह गॉड,
1: सो इन टोटल अबाउट 200 फ्लाइट्स विल बी कैंसिल टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, बिकॉज रात तक जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई है। द विंड्स जो है ये कल तक ईज अप हो जाएंगी। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वेलिंगटन। काफी जगह पे तुम्हें पता है वहाँ पे लोअर हट में एक्चुअली में वहाँ पे कुछ घरों की इवैक्यूएशन भी की गई है।
0: ओह गॉड,
1: इमरजेंसी सर्विसेज बुलाई गई थी। सो देयर वाज अ स्लिप नियर अ हाउस इन गिल रोड जस्ट आफ्टर 3 PM, सो वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज गई थी। एयर न्यूजीलैंड ने बोला है कि काफ़ी डिसरप्शंस जो है फ्लाइट्स को लेकर ये हो सकती है एंड काफ़ी जगह पर रोड भी क्लोज है, सर्फेस फ्लडिंग भी है। सो ऑकलैंड में इतनी बड़ी वार्निंग्स नहीं है जितनी वेलिंगटन में है। ऑकलैंड में इज जस्ट द क्रेजी वेदर।
0: वेलिंगटन की तो वाट लग गई है मामू इन टर्म्स ऑफ मुन्ना भाई, ऐसा वो बोलते थे अभी। बट एनीवे, अभी हम खेले फिर अभी ऐसे इतने सीरियस नोट पे अभी हम कैसे वहाँ पे वेलिंगटन पे इतना सब कुछ हो रहा है और हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं।
1: गेम तो वेदर खेल रहे हैं ना रूस में।
0: या वो भी है। तो 0800-004-866 कॉल कीजिए यहाँ पे, लेट्स लाइटन द मूड अप। अगर हमें वेलिंगटन से कोई सुन रहा है तो उनका थोड़ा लाइट अप हो जाएगा ना।
1: कॉल कीजिए। एक्चुअली में अगर आप रोवा के जरिए सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। हाउ अबाउट दिस, थोड़ा टाइम आपको देते हैं, यहाँ पे कॉल कीजिए 0800 हम पर। कितनी देर में कॉल करना है रुस्बे?
0: अभी वो सुनेंगे तो वो जैसे ही सुनेंगे वैसे कॉल कर लो हम लोग।
1: जैसे आप सुनते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए 0800 हम पर, बिकॉज रोवा लिसनर्स को भी चांस मिलना चाहिए ना यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। इफ यू आर लिसनिंग थ्रू रोवा राइट नाउ तो रिमेंबर आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 0800 हम पर, 0800-004-866 पर।
0: And now it's time for a perfect Friday song. And why perfect Friday song? क्योंकि फ्राइडे में अक्सर हम दोस्तों के साथ कैचअप करते हैं,
1: नॉस्टैल्जिक होते हैं।
0: हाँ, बट कुछ लोगों के ऐसे भी फ्राइडेज होते हैं जहाँ पे फ्राइडे आ जाता है लेकिन दोस्तों के साथ कैचअप नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए ये गाना
1: मतलब खुद के लिए गाना प्ले कर रहे हो।

0: accurate traffic.
1: Dry July starts next week.
2: Showers overnight for Auckland. Gale force southwesters easing, a low of 8 degrees. Reduced speed limits and lane reductions might be needed on the Harbour Bridge. Watch out for that. The northwestern pretty good. Too Massey 25 minutes on the southern, 50 minutes to Drury. It's heavy northbound from Princes Street to Green Lane, south from Ellerslie to Sylvia Park. Southwestern heavy Puhinui Road through to Onehunga.
1: Go alcohol free this July for cancer support. Search Dry July to register.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वेसिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: Winter आ गया है at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson with deals on Karcher 18 volt garden skins or 20% off Mitre Thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.

0: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं. ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स. कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स. डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी. 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस. फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstires.co.nz और देयर फेसबुक पेज. RPS टायर्स, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट.
2: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: Power Drive at 5.
5: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
6: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. Connect the dots. हम खेलने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कोई participation ही नहीं आया आज, Sandy. Very unfortunate.
7: So call now अगर आप खेलना चाहते हैं. 0800-00-HUM 0800-00-4866 is a number. Maybe Ruzbe, we can start the game. Okay. You can continue the game यहाँ पे. So आपको word के साथ word कोई भी random उठा के connect करना है, बस relatable होना चाहिए उस word
6: to
7: के साथ.
6: To the word prior to it only.
7: Yeah.
6: It can't.
7: To the हाँ.
6: And then if it is not relatable to prior word, then you can give us a basically buzz. ऐसा करके.
7: Yeah.
6: है? So let's see. We have got two players joining us. Hopefully now. Hi. आपका स्वागत है.
8: Hello.
6: जी. क्या नाम है आपका?
7: बढ़िया.
8: Rocky.
6: Rocky.
7: Rocky. Are you ready?
6: एक मिनट. Rocky नहीं, हमारे साथ दूसरे भी है ना caller, हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे. Hi.
9: Sandy. Hi,
6: Rusbe. Hi. सपना, कैसे हो?
9: मैं ठीक हूँ, हमेशा मुझे ही कॉल करना होता है.
6: थैंक्स यार सपना. आज सपना आपके साथ रॉकी है यहाँ पे लाइन पे. रॉकी, आप सुन पा रहे हैं सपना को?
9: हाय रॉकी.
7: ओके, बढ़िया.
8: हेलो, हाउ आर यू?
9: आई एम गुड, थैंक यू. हाउ आर यू?
8: ठीक.
6: अच्छा, अभी और भी अगर बात करना चाहते हो मैं तुम लोग को साइड में लगा देता हूँ.
7: तो शुरू एक पर्सन शुरू करेगा.
6: रे मजाक कर,
8: एक बार वापस गेम एक्सप्लेन कर पाओगे?
7: हाँ, अभी करते ठीक है. रुज़बे, पहले हम खेल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं.
6: खेल के एक्सप्लेन करते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड दूंगा, मैंने बोल दिया है वड़ा पाव.
7: मुंबई.
6: मैं बोलूंगा बॉलीवुड.
7: आमिर खान.
6: अच्छा, तो ऐसे करके ये
7: मतलब जो वर्ड है उसके साथ कनेक्टिंग वर्ड लेके आते रहना है और आपका गेम कहीं से भी शुरू होके किसी भी इंडस्ट्री तक जा सकता है.
6: कहीं पे भी जा सकता है, बस आपको उसको एक जो पहला वर्ड है उसके साथ कनेक्ट करना है. ठीक है?
8: ठीक है, थैंक यू.
7: ओके, सो
6: ओके, ग्रेट. हु वांट्स टू स्टार्ट? लेडीज फर्स्ट. सपना स्टार्ट.
9: रोशनी स्टार्ट.
6: क्या क्या?
9: तेलंगाना.
6: और अब बाप रे,
7: तेलंगाना लेके आई. ये
6: वेरी नाइस. तेलंगाना. रॉकी, तेलंगाना.
8: श्रीलंका.
6: श्रीलंका. ओके
7: ओके, इंटरेस्टिंग. यस.
9: रावण.
8: हनुमान.
6: ओके, नेक्स्ट.
9: महादेव.
6: ओके. ऐसे भी टॉपिक पे मत लेकर जाओ जहाँ पे हम जोक ही ना मार पाए. कुछ
7: थोड़ा इधर उधर कोई तो जाओ.
6: मैं यार इतना रिस्क में डाल रहा हूँ यार.
7: शिव के आगे.
6: हाँ, ओके.
9: क्या क्या? ओशन.
7: शिव.
9: शिव. सुशांत सिंह.
6: सुशांत सिंह, क्योंकि वो हाँ वो मूवी में, केदारनाथ मूवी में शायद से कुछ रिलेशन है वहाँ का. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. ओके,
7: वाओ, इंटरेस्टिंग.
6: वेरी नाइस, वेरी नाइस.
7: सुशांत सिंह राजपूत.
8: बॉलीवुड.
6: बॉलीवुड. अच्छा, ओके.
9: बॉलीवुड. दंगल.
6: अच्छा, दंगल. ओके, नेक्स्ट.
8: रेसलमेनिया.
6: WrestleMania. Oh, wow. Achha, very nice. Okay, ठीक है. WrestleMania. वो WWE वाला एक प्रोग्राम होता है.
9: दारा सिंह.
7: दारा सिंह.
6: WrestleMania से दारा सिंह, I don't think is a connection, but ठीक है.
8: हल्क होगन में बेटर रहता है बट ठीक है नारा सिंह का कनेक्शन मैं जूबीज बोलूं क्योंकि मैंने जूबीज पे उनको देखा था वॉक लेते
6: अरे बहुत बढ़िया
7: कर सकते हो यार यू कैन डू दैट
10: क्या बोला
6: जूबीज हाँ
10: ओके फिर वापस वड़ा पाव
6: चटनी
8: वड़ा पाव चटनी
6: हाँ ठीक है नेक्स्ट
10: समोसा

0: Oh dear.
1: Thank you. Bye.
2: Thank you.
3: Have a good day.
0: Thank you.
1: Bye.
2: Thank you.
0: ओके तो गाइज देखो ये इतना सिंपल होता है यार बस दो लोग हमें हमेशा चाहिए दो नए लोग चाहिए ताकि इसको हम और भी फन सेगमेंट कर सके
1: और दो से ज्यादा भी अगर कभी कनेक्ट होना चाहिए तो वो भी हो सकते हैं
0: अच्छा हो सकते हैं
1: चेन गेम ना
0: ओके
1: या
0: ठीक है ये मेरे से सारे डिफिकल्ट काम करवा रही है एनीवे लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक नाउ
4: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
6: अपना ए गेम
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: You're listening to Hampling Bollywood's biggest hits. हमने आपके लिए एक brand new podcast रिलीज किया है पिछले दो दिनों में, I think last दो दिन पहले.
2: Yeah.
1: And this is about the buzzing word, the buzzing topic, which is AI.
2: आर्टिफिशियल
1: इंटेलिजेंस को लेकर
2: दर्शित पांड्या के साथ.
1: जी, दर्शित पांड्या जो प्रिंसिपल लीड है, क्या उनका एक टाइटल प्लीज बताओ सैंडी यार प्रॉपरली. बट इन्होंने हमारे साथ बहुत ही डिटेल में बात की है अबाउट AI. हमने लिटरली डेढ़ घंटा इनके साथ इनका दिमाग खाया है.
2: सो दर्शित पांड्या जो है ये सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर भी है.
1: जी, यहाँ

0: वो काफी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में अराउंड द वर्ल्ड न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं.
1: रिगार्डिंग AI इन्होंने बहुत सारी चीजें हर प्लेटफॉर्म पे शेयर की है
0: और इन्होंने हमें एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टू स्टार्ट पॉइंट बताया है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो. और इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें बताए इन द पॉडकास्ट कि हाउ AI कैन चेंज योर लाइफ और ऑप्टिमाइज योर लाइफ.
1: सो क्या है ना कि AI हमारी जिंदगी में ऑलरेडी है इन एवरीडे लाइफ. सो AI से भागने से अच्छा है कि AI को लर्न करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए. टू स्टार्ट ऑफ इसीलिए आपके लिए हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं. एंड ये पॉडकास्ट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इट इज़ फॉर एवरीवन.
0: जी, और हम होप कर रहे हैं कि हम इसका एक सीरीज शुरू कर सकें बिकॉज हम भी नए हैं इस फील्ड में. हमें भी अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है. अलग अलग एजेंट्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो लेवल तक पहुंचे. एंड कंसिडर दिस टू बी लाइक अ कोर्स. पहली बार हम अनफिल्टर्ड में हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं, हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ खुद कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं
1: थ्रू एक स्पेशलिस्ट के थ्रू यहाँ पे. और दर्शित पांड्या ने काफी चीजें शेयर की इस पॉडकास्ट में. सो आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पे, आपको फुल एपिसोड मिलेगा. रोवा पे सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़्बे, Spotify पे, Apple Music पे आप सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा ये रहेगा एपिसोड, बिकॉज जो लेटेस्ट एपिसोड होता है वो बिल्कुल टॉप पे रहता है.
0: जी,
1: एंड थोड़ा सा बिट आपको वैसे सुनाते भी हैं यहाँ पे. ही शेयर्ड समथिंग अबाउट AI मॉडल्स.
2: डेटा आप AI से वर्कआउट कर सकते हो, आस्क कर सकते हो, वो एनालाइज करके आपको बता सकता है. लेकिन जब आपने मास्क किया डेटा के, भाई PII इन्फॉर्मेशन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, वो आपकी हाइड हो गई, वो एक्सपोज नहीं हो, तो कैसे यूज करना है, दैट इज ऑल्सो अ स्किल एज वेल.
0: राइट,
2: इसके लिए जो आप बता रहे हो ना पॉलिसी नहीं बनी, तो अभी क्या होगा इसके लिए, पॉलिसीज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उसकी लीगल एंड सिक्योरिटी टीम एवरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बैठ के कंपनी में रेगुलरली अपडेट करती जाएगी कि अगर आप AI यूज कर रहे हो, हाउ यू कैन यूज अ रिस्पॉन्सिबल AI, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू विथ योर डेटा एज वेल. एंड उस बारे में जैसे पॉलिसीज बनेगी कंपनी लेवल पे, इट विल बी बिकमिंग अ नॉर्मलाइजेशन फॉर द पीपल विदाउट ब्रीचिंग द डेटा.
1: अभी इन्होंने जैसे इस कंपनी में MediaWorks में बहुत स्मॉल लेवल पे शुरू.
0: सो और भी इसके बारे में अगर आपको जानना है,
1: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने बेसिक चीजें गाइस यहाँ पे बताई है कि AI को अपनी जिंदगी में, यू नो, अगर आप राइट नाउ आप AI यूज कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए गूगल की जगह, या फोटोज बनाने के लिए काफी लोग एक्चुअली में AI को यूज करते हैं, इन छोटी चीजों के साथ साथ अपनी लाइफ को आप कैसे ईजी बना सकते हैं वो भी इन्होंने बताया है. लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है एंड टू स्टार्ट ऑफ बेसिक से अगर आपको सीखना है तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे सीख सकते हैं आप.
3: Are you ready? Shockbusters.
4: थोड़ा तो हॉल बना दे.
0: सो फुल एपिसोड अगर आपको जानना है तो ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू विल गेट द लिंक फॉर द फुल ऑडियो एपिसोड. अभी के लिए इट इज टाइम फॉर आस्था गिल एंड दिस सुपर हिट सॉन्ग सचिन जिगर अलॉन्ग विद दिव्या, आपके लिए ओनली ऑन हम

0: मैं वापस आऊंगा, जो वापस आ गई है थिएटर्स में, उससे आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये ब्यूटीफुल गाना कमाल है। वैसे ऑकलैंड तैयार हो जाइए, बिकॉज गुज्जू भाई इज कमिंग बैक टू ऑकलैंड। गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, ये नया कॉमेडी शो लेकर, सिद्धार्थ रंदेरिया, द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया इज गोइंग टू बी इन आर सुपर सिटी। premiertickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे। और ये शो जो है ये होने वाला है फ्राइडे 3rd July, यानी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 7:30 PM एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पे आप ज़रूर आ जाइएगा और इस शो का आनंद उठाइएगा। अभी हमें सैंडी बताने वाली है राहत फतेह अली खान का जो शो है, इसका जो हम कंपटीशन कर रहे थे, इसमें आज काफ़ी लोगों ने टिकट्स जीते हैं।
1: काफ़ी लोगों ने टिकट्स जीते हैं, तो विनर्स का नाम तो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो उसमें शो के बारे में।
0: कौन से शो के बारे में?
1: राहत फतेह अली खान।
0: अच्छा, राहत फतेह अली खान के शो के बारे में। राहत फतेह अली खान का शो भी होने वाला है बहुत जल्द, 25th July को ये शो होने वाला है, जो प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे। और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में, तो आपको वहाँ पे भी जीतने का मौका मिला है, डबल पास।
1: यस, सो अभी कुछ विनर्स का नाम हम यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे पासेस जीते हैं, जो कि डिफरेंट शोज में जो विनर्स हैं ये निकाले गए हैं। एक विनर जो हमारे हैं, इनके मोबाइल के लास्ट 4 digits है 4188। सपना, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू।
0: 4188 सपना, कॉन्ग्रेचुलेशन। और
1: सेकेंड विनर जो है, इनका नाम क्लियर नहीं है, लेकिन इनके मोबाइल के लास्ट 4 digits है 9418। सो अगर आप शॉर्टलिस्ट है और आपका मोबाइल नंबर फिनिश होता है फ्रॉम 9418, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू।
0: आपको हम कॉन्टेक्ट करेंगे, हम बताएंगे आपको कि आपने जीता है ये।
1: यस, ये आपको हम बताएंगे। एंड जो हमारे नेक्स्ट विनर है, इनका मोबाइल के लास्ट 4 digits है 4467। अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड जो हमारे फोर्थ विनर है एंड द लास्ट विनर, इनका नाम है दीप्ति, एंड द मोबाइल जो है इनका फिनिश होता है बाय 6603।
0: 6603 दीप्ति, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमित, दीप्ति, देन सपना, एंड देन वन मोर जिन्होंने नाम नहीं
1: जिनका
0: था।
1: नाम नहीं, या सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज, आपने डबल पास जीता है राहत फतेह अली खान के शो के लिए,
0: जिनका शो होगा 25 जुलाई को एट द ट्रस्ट अरीना। dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल सकते हैं।
2: पावर ड्राइव एट 5 ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन। थ्रोबैक
3: NASA. NASA's the one in Punjabi.

0: accurate traffic.
1: Dry July starts next week.
2: Showers overnight for Auckland. Gale force southwesters easing, a low of 8 degrees. Reports of a crash on the northern at the Oniwa Road interchange. Delays in both directions. The southern, we're hearing there's a crash south of Penrose Road. Traffic's heavy heading north from Princes Street to Green Lane. And the southwestern, pretty slow from Massey Road to Onehunga. Flights to and from Wellington are cancelled.
1: Go alcohol free this July for cancer support. Search Dry July to register.
3: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
6: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
7: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
8: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cosy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
10: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
11: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Weather warnings remain in place for parts of the country as a low pressure system makes its way across New Zealand. Met Service meteorologist Heather Keats says they expect things to start getting better later tonight.
13: Still have a few watches and warnings active, but they'll start to expire across the day. Lewis Pass is the only road now remaining under a road snowfall warning, with snow above 600 metres until 9 tonight.
12: Construction has officially begun on a new cancer centre for Hawke's Bay. Around 500 patients are expected to benefit from getting their treatment locally at the Hawke's Bay Fallen Soldiers Memorial Hospital. Australia is reportedly planning to strengthen its ban on under-16s using social media. A recent study by the University of Newcastle found as many as 85% of children said they were still using apps such as Snapchat and TikTok, despite the law. MediaWorks has won a BSA ruling over a recent story about the US president. The complaint was about a news bulletin reporting the president saying he was glad former FBI director Robert Mueller had died. The complainant argued there was an omission which breached accuracy and fairness standards. The BSA found the summary was accurate and the choice to include the full post was at the editorial discretion of the broadcaster. To football updates brought to you by Hisense, knockout football has come in the group matches for the All Whites at the World Cup. They have to beat Belgium tomorrow from 3 o'clock to make it out of the group. The Belgians have been below their best. And another post-season blow for the Crusaders. Uncompromising loose forward Cullen Grace is off to play for the Scarlets in Wales. Earlier this week, David Havili confirmed a move to Japan.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
14: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
15: भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट जय नारायण जोखन की पत्नी रजनी सेन अंजनीश जयंत मोहिनीश और रोविन जोखन की मां हॉर्टन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को दोपहर 1 बजे वाटुआका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को दोपहर 1 बजे वातुवाका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं।
0: सूचित किया जाता है
15: शांतल और भावना के पिता उसामा अली और मोहम्मद अली के ससुर कुशमिला मानसल के पति गुडविड हाइट मनुकाओ के कीथ इयन मैंसल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 022-394-6460 पर कॉल कर सकते हैं। शांतल और भावना के पिता ओसामा अली और मोहम्मद अली के ससुर कुशमिला मानसल के पति गुडवुड हाइट मनुकाओ के कीथ इयन मैंसल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 022-394-6660 पर कॉल कर सकते हैं। मायावती और स्वर्गीय बसंत कुमार के पुत्र सुहेनशा और सुहेना के पिता सुमन लता कुमार के पति बिरम कुमार के भतीजा एयर कस्टम्स एनजेड के ओनर सुजयंत कुमार की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार संडे को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कॉल करें 021-024-61915 पे या आप विजिट कर सकते हैं 56 सैरली ड्राइव मनुरेवा। मायावती और स्वर्गीय बसंत कुमार के पुत्र सुहेनशा और सुहेना के पिता सुमन लता कुमार के पति बिरम कुमार के भतीजे एयर कस्टम्स न्यूजीलैंड के ओनर सुजयंत कुमार की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार संडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 021-024-61915 पे कॉल कर सकते हैं या 56 सरली ड्राइव मनुरेवा जा सकते हैं।
14: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: छह बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम यूजुअली एक थीम लेकर आते हैं या फिर शाउटआउट लेकर आते हैं। आज सैंडी गुड इवनिंग फर्स्ट, तो
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। वैसे ट्रेंड मेकर्स के कुछ रीसेंट एपिसोड्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, यू कैन गो टू रोवा।
3: ओके,
4: सो रोवा पे जाइएगा एंड वहां पे हम पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ट्रेंड मेकर्स दिखाई देगा। तो हमने रिसेंटली काफ़ी एपिसोड्स किए हैं। अगर आप अमित त्रिवेदी के गाने सुनना चाहते हैं, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के गाने सुनना चाहते हैं,
3: सिर्फ गाने नहीं है,
4: बातें भी,
3: गाने नहीं है, मतलब पूरा हमारा शो है वहाँ पे।
4: ये फुल शो जो है हमारा एक्चुअली में, सो वहाँ पे आपको मिलेगा लव एट फर्स्ट साइट के गाने।
3: फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का जब हमने किया था शॉर्ट आउट, उसमें हमने उसके मूवी के डायलॉग्स भी प्ले किए थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल शो। आई पर्सनली
4: लुक बैक एट हिज करियर, हमने इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर की थी, हमने उनकी कुछ इंटरव्यूज प्ले की थी। And then,
3: this trend makers जो हमने अभी डाला है आपके लिए रोवा पे, this is an ideal one for you अगर आप travel कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, let's say road trip पे जा रहे हो।
4: हमने road trip के गाने भी डाले हैं वहाँ पे guys।
3: And it is not just मतलब सिर्फ गाने नहीं play हो रहे, side by side हमारी बातें भी हो रही है, ad नहीं सुनाई देंगे आपको।
4: हाँ।
3: Without ads, you are listening to a radio show. Imagine, this is like the best thing ever.
4: For example, road trip ki agar aapko gaane sunne hain, to wahan pe, if you're planning a road trip, long drive maybe, not even road trip right now, long drive, to humne ek aisi list wahan pe rakhi hai, jo ke aapke travel wale gaanon ki hi sirf list hai. So what I will do this thing, na, वैसे तो आप रोवा पे जाके ये check कर सकते हैं, but what I will do right now is I will just go to Facebook and वहाँ पे जाके इसका एक link post कर देती हूँ। एक link पे जाएंगे तो बाकी links आपको मिल ही जाएंगे।
3: ठीक है, तो सैंडी ये कर देगी। इन द मीनवाइल इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू टेल यू कि आज किसको हम दे रहे हैं शाउट आउट, आज किसके लिए किसके गाने।
4: अर्जुन कपूर,
3: आज अर्जुन कपूर का बर्थडे है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग अर्जुन कपूर टुडे। एंड काफ़ी ट्रोल होते हैं अर्जुन कपूर फॉर नो रीज़न और फॉर सम रीज़न, वट एवर रीज़न, बट आई थिंक हिज मूवीज दैट ही इज़ डन इज़ अमेजिंग। जो आज हमने लिस्ट बनाई है आपके लिए गानों की, मुझे आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू गिव यू गुड फ्राइडे वाइब्स।
4: या 100% अर्जुन कपूर ने बहुत अच्छा किया है रुजबे अपने करियर में। अगर देखा जाए कहाँ से शुरुआत उन्होंने की, एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया है कुछ मूवीज में, लाइक नो एंट्री, वांटेड।
3: अच्छा, अभी सवाल पूछने वाला हूँ मैं, लेकिन
4: सवाल
3: तो इसलिए आप ज्यादा डिटेल मत देना वो चीज के बारे में। तो सवाल मेरा आज का ये है कि आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बिफोर अर्जुन कपूर का ट्रांजिशन, तो वैसे अर्जुन कपूर का ट्रांजिशन हुआ था बिफोर ही गॉट इनटू एक्टिंग, उनकी पहली मूवी थी इशक जादे, और इशक जादे के लिए उन्होंने 50 किलोज लूज किया था।
4: यस, वो कैसे लूज किया वो आपको बताएंगे हम थोड़ी देर में।
3: हाँ, तो ही एक्चुअली वेंट थ्रू अ मैसिव स्ट्रगल विद ओबेसिटी एंड ही वाज स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी आल्सो, जिसके कारण और बाकी अलग दूसरों फैक्टर्स के कारण आई थिंक वो हमेशा बुली भी होते थे इन स्कूल, एंड दैट्स व्हाई ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ 11th। तो उन्होंने अपना 12th भी नहीं पास किया।
4: या काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, बिकॉज बचपन से उनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग भी रही है उस पर, बिकॉज हिज पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन ही वाज 11,
3: और वो हमेशा न्यूज़ में रहते थे ना,
4: हमेशा न्यूज़ में रहते थे, बिकॉज बोनी कपूर हिज फादर, ही मैरिड टू एक्ट्रेस श्रीदेवी जो कि बहुत बड़ी थी, एंड देन वो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड रहा फॉर अर्जुन कपूर, दैट्स व्हाई हिज चाइल्डहुड सफर्ड अ लॉट।
3: या एंड अभी जवानी भी, बट एनीवे आज का जो सवाल है वो ये है कि बिफोर गेटिंग बिकमिंग अ बॉलीवुड हीरो, अर्जुन कपूर ने बिहाइंड द सीन्स काम किया था शाहरुख खान के एक मूवी पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो कौन सी शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा काम किया था? मैं ऑप्शंस भी दूंगा आपको।
4: ओके
3: ऑप्शंस ए, ऑप्शन ए कभी खुशी कभी गम K3G, ऑप्शन बी कल हो ना हो KHNH, या ऑप्शन सी मैं हूं ना MHN। मैं हूं ना को MHN को भी नहीं बोलते ना, बट हाँ एनीवे मैं हूं ना,
4: इन्हीं में से कोई एक मूवी है,
3: इन तीनों में से कोई एक मूवी है जिसके ऊपर अर्जुन कपूर ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। कभी खुशी कभी गम, कल हो ना, कल हो ना हो या फिर मैं हूं ना, कौन सा ये सही आंसर है? 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ आप अभी के अभी लिखकर भेजिए और देखते हैं आपका जो बॉलीवुड नॉलेज है या आपका
4: कितना एक्यूरेट है,
3: तुक्का है वो कितना एक्यूरेट पड़ रहा है।
4: हाँ, तुक्का लगाना है, तुक्का पे लगा के भेजिए 5599 पे। तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी है,
3: थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे सही जवाब क्या है। बट तब तक के लिए ड्राइव कीवर्ड पे आप भेजते रहिए इसके जवाब, ए बी या सी। A is कभी खुशी कभी गम, B is कल होना हो, C is मैं हूं ना। एंड द क्वेश्चन इज के अर्जुन कपूर ने इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे काम किया था, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया था। और उनकी पहली मूवी का ये गाना अभी आपको सुना रहे हैं जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, ब्यूटिफुल मूवी जिसमें परिणीति चोपड़ा का डेब्यू एज अ लीड था,
4: एज अ लीड एक्ट्रेस डेब्यू हुआ था। इशक ज़ादे अच्छी मूवी थी,
3: बहुत अच्छी मूवी थी ये। एंड आई थिंक ऑनर किलिंग काइंड ऑफ थीम था उसका, बट अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, सॉन्ग अमेजिंग।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
8: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests, built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish, because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
10: MediaWorks complaints. How can I help?
11: My kids won't shut up.
10: I'm not sure that's our problem.
11: They keep reciting lines from one of your radio ads.
10: Aw, cute.
11: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
12: What do you want, son? I want me some of that real southern chicken.
11: 28 times.
10: So where are you now?
11: Eating chicken.
13: Advertise with
14: MediaWorks.
13: New Zealand listens to us.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.

0: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits, Trendmakers. में आज Friday का दिन है, लेकिन आज 26 जून और आज अर्जुन कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
1: Yeah, we're celebrating अर्जुन कपूर टुडे। और जो लिस्ट ऑफ गाने आज यहाँ पे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज के ना, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ

0: उसको तो ऐसा रिटायरमेंट, बहुत ट्रॉल होता है इस चीजों के बारे में,
1: बहुत बहुत बुरा, मतलब बुली बुली लेवल पे बहुत बुरा होता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है अर्जुन कपूर के साथ, काफी बार हुआ है। वो एक्चुअली में काफी फिटनेस को लेकर ही यूज्ड टू बी ओबीस,
0: yes,
1: बहुत ही हेवी होते थे, और सलमान खान ने उनकी काफी मदद की।
0: Yeah, so turning point था उनके लाइफ में, because he used to weigh around 140 kg and asthma भी था, and he said कि he had a low confidence, but then सलमान खान encouraged him कि तुम्हें थोड़ा ना physically अगर तुम अपने आप को transform करते हो, you can be a very good actor, because इससे पहले वो assistant director थे, assist किया था। सो उन्होंने गाइड किया अर्जुन कपूर को फॉर ट्रेनिंग, फिटनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन।
1: क्या आपको पता था सैंडी, बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन अर्जुन कपूर यूज्ड टू डेट सलमान खान की यंगर सिस्टर अर्पिता।
0: अर्पिता, यस।
1: या सो अर्जुन, तो दिस इज क्रेजी यार,
0: इट इज क्रेजी। अर्पिता को ही वाज डेटिंग एंड देन इनका ब्रेकअप हुआ कुछ ऐसे, एंड तभी तो रिमेम्बर कितने जोक्स भी बने थे कि वही खानदान मिलता है अर्जुन कपूर को, बिकॉज अर्पिता है निर्मलाई करोड़ा का।
1: मैं अभी रिलेट कर रहा हूँ ये चीज, है मुझे पहले नहीं पता था ये, लेकिन माय गॉड दैट्स क्रेजी ना। बट एनीवे, सलमान खान का एक्चुअली मैं काफी बड़ा फैन रहा है अर्जुन कपूर, एंड नॉट जस्ट अर्जुन कपूर यार, आई थिंक वो जिसके साथ स्ट्रगल किया था इनिशियली, वरुण धवन।
0: वरुण धवन, या
1: वरुण धवन ऑल्सो इज अ बिग लाइक यू नो रिस्पेक्ट सलमान खान ऑब्वियसली फॉर लॉट ऑफ रीजंस।
0: सो या, लेकिन अपने गाने में भी एक्चुअली में रिप्रेजेंट किया था अर्जुन कपूर ने, गाया नहीं है लेकिन उनके ऊपर ये गाना एक्चुअली में फिट होता है उनकी तेवर मूवी का,
1: बनाया था वाजिद ने, तो एंजॉय कीजिए दोनों सलमान फैंस।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: New tasty cookie dough bars.
3: Showers overnight for Auckland Gale Force Southwesters, easing a low of 8. On the northern, reports of a crash at the Oniwa Road interchange causing delays there. The southern, pretty heavy northbound from Sylvia Park to just past Green Lane. Catching the train on the southern line tonight, there's a broken down freight train near Manurewa, so there is delays and possible cancellations on the southern line.
2: Tasty cookie dough bars, a delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
5: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 week at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 week, on now at Pack and Save.
6: Auckland Airport's international check-in is transforming, so it helps to know your check-in zone. Up to 24 hours before you fly, look up your flight's check-in zone on the Auckland Airport website. Or when you arrive at the airport, just look at the big screens.
7: Bring on the world.
8: Okay, listen up, team. Don't forget your bloody important meeting this week to get blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
9: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
10: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
13: Let's go!
14: Trend Makers.
15: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे आज Trend Makers में अर्जुन कपूर को shout out दे रहे हैं, उनके बढ़िया से गाने आपको सुना रहे हैं.
16: Half Girlfriend movie का ये गाना आप सुनने वाले हैं, जो कि चेतन भगत के novel के ऊपर based थी. मुझे movie ये अच्छी लगी थी. श्रद्धा कपूर के साथ इनकी ये movie आई थी and इसमें विक्रांत मसी ने role किया था. अर्जुन कपूर का जो character था माधव, उसके वो friend का role इन्होंने किया था विक्रांत मसी ने.
15: ये मूवी में विक्रांत मसी थे इस मूवी में. ओह वाओ, ओके. एनीवे, बहुत ही बढ़िया मूवी थी हाफ गर्लफ्रेंड भी. आई थिंक काफ़ी पसंद आई. एक मैसेज आया हमें यहाँ पे, जो अभी हम मतलब पता नहीं इस पे कितना अग्री करते या नहीं करते,
16: बट दैट्स ओके, हर किसी का व्यू होता है.
15: हाँ, लेकिन क्या बोल रही है, डोंट अग्री विथ यू. स्ट्रगलिंग एज एन अडल्ट एज वेल, ही एंजॉयड विथ मलाइका अरोरा, ब्रो अरबाज खान फैमिली, नो स्ट्रगल. अच्छा, he was Salman Khan paltu kutta, thus got wanted and no entry movies as assistant director. Achha, and he cheats on them by having affair with her, lol. Achha, anyway, ye matlab
16: har kisi ka apna view hota hai na, it is okay.
15: Ha, theek hai, but anyway, मुझे नहीं पता कि अरबाज खान और मलाइका का ब्रेकअप कब हुआ और अर्जुन कपूर कब लाइफ में आया.
16: उनका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था.
15: अच्छा,
16: सो अर्जुन कपूर की एंट्री काफी, लाइक एज फार एज वी नो, उनका ब्रेकअप.
15: अर्जुन कपूर को इतना हेट मिलता है, अब मुझे समझ में आया सैंडी.
16: कैसे?
15: क्योंकि वो सलमान भाई के फैमिली के साथ पंगा लिया तो भाई.
16: नहीं, बट ही डजंट हेट हिम ना, वो तो अभी भी सपोर्ट करता है.
15: नहीं नहीं, बट भाई फैंस फैंस है सैंडी.
16: नहीं, आई डू नॉट, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसबे.
15: अच्छा, ठीक है.
16: आई डोंट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट दो, बट या
15: Anyway,
16: ये हर किसी का अपना व्यू है एक्टर को लेके. अब से
15: बट मेरे को लगता है जो हमने कहा कि स्ट्रगल किया वो तो, हाँ यार, काफी. जब तुम्हें ऑनलाइन इतना हेट मिल रहा है फॉर नो रीजन. एक शो है यूट्यूब पे, तन्मय भट्ट का एक शो आता है, उसमें वरुण धवन आया था. तो वरुण धवन ने बोला ना कि जब मेरे ऊपर मजाक उड़ता है, मैं ट्रोल होता हूँ, तो अर्जुन बहुत खुश होता है.
16: yeah.
15: क्योंकि उससे ध्यान हट जाता है.
16: वो इसको स्पोर्टिंगली ही वैसे लेते हैं, बट हम ऐसा बात कर रहे हैं कि एक एक्टर जिसने अच्छी मूवीज भी की है रिगार्ड रिगार्डलेस वो ट्रॉल होते हैं कि उन्हें करियर में कुछ किया नहीं है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने करियर में किया है, अच्छी मूवीज उन्होंने की है जो आज आप गाने सुन रहे हैं यहाँ पे।
15: और मुझे लगता है हर किसी के अपने अपने प्रिविलेजेस होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है।
16: Like
15: we all have our own privileges. जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को वो इंटरव्यू पता नहीं क्यों मेरे मन में बस गया अब तक। एनीवे अभी के लिए सुनते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना, आज के वेदर के अकॉर्डिंग आई थिंक बहुत परफेक्ट ये सूट होता है, एंड या फ्यू मोर सॉन्ग्स आफ्टर दैट।

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए ड्राइव शो हम यहाँ पे लेकर आते हैं 7 बजे तक. और आज अर्जुन कपूर को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका बर्थडे आज होता है.
1: थोड़ी देर पहले तुमने एक सवाल पूछा था रुजबे
0: जी
1: अर्जुन कपूर को लेके.
0: तो मैंने सवाल पूछा था कि कौन सी मूवी में अर्जुन कपूर ने बिफोर बिकमिंग अ हीरो, उन्होंने शाहरुख खान की एक मूवी है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, कभी खुशी कभी गम, ए कल हो ना हो, बी सी मैं हूं ना. एंड द राइट आंसर इज गेस करो सैंडी, व्हाट इज द राइट आंसर?
1: कल हो ना हो.
0: दैट इज राइट, यस, कल हो ना हो इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर.
1: मैंने एक्चुअली अभी देखा,
0: रेशमी को यहाँ पे सही आंसर पता था. रेशमी ने यहाँ पे सिर्फ गेस किया, बाकी सबके गलत आंसर आए यहाँ पे. बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इसी के साथ आई थिंक वी आर गोना प्ले द फाइनल सॉन्ग फॉर अर्जुन कपूर.
1: या अर्जुन कपूर का ये गाना आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. मुझे लगता है ना कि अर्जुन कपूर को OTT पे आना चाहिए.
0: OTT पे?
1: Yes.
0: हाँ, जैसे अभिषेक बच्चन भी OTT पे काफी कमाल किया था उन्होंने.
1: कई बार क्या होता है कि मूवीज एक एक्टर को सूट नहीं करती है. सम मूवीज वर्क फॉर सम एक्टर्स, सम मूवीज डजंट वर्क फॉर देम. मुझे लगता है अर्जुन कपूर अगर OTT पे आ जाएगा ना, अर्जुन कपूर कहीं ना कहीं मुझे बॉबी देओल की याद दिलाता है कि बॉबी देओल का शुरू अच्छा हुआ था बट देन एकदम फ्लैट हो गया वो. बट देन बॉबी देओल जब OTT पे आया, आश्रम में आया, वी लव्ड हिम. एंड उसके बाद उसका खैर अप ही गया है, गेम अप ही गई है. मुझे लगता है कि अर्जुन कपूर ना अगर OTT पे आके कुछ सीरीज करनी शुरू कर देता है तो मे बी वी माइट सी द रियल, मतलब जो अर्जुन कपूर करना चाहता है प्रोजेक्ट, वैसे वाले प्रोजेक्ट.
0: Yeah, but you know one interesting fact about Arjun Kapoor before we end this segment. Arjun Kapoor ko bahut hi unusual phobia hai. Aur unko ye phobia hai around ceiling fans.
1: Ceiling fans ka.
0: Unke ghar pe koi bhi ceiling fan nahi hai. Aur unko ye is phobia ko bhi naam mein hai Sandy. Isko bolte hai anemophobia. Anemophobia is basically deep rooted fear on single ceiling fan. इंस्टॉल, मतलब जो सीलिंग फैन होता है ना इंस्टॉल होता है, उसका फोबिया है उनको बहुत बड़ा. न्यूजीलैंड में खुश रहेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सीलिंग फैन नहीं होते ना.
1: होते ही नहीं है यहाँ पे. अगर किसी ने कोई नया घर बनाया अपने हिसाब से तो वो रखेंगे,
0: तो वो रखते हैं. हाँ, बट जरूरत भी नहीं पड़ती है काफी बार सीलिंग फैंस की यहाँ पे. एनीवे, विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग,
1: टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस. ट्रेंड मेकर्स अभी आप रोवा पे भी सुन सकते हैं. यू कैन जस्ट गो टू रोवा एंड हम के नीचे आपको ट्रेंड मेकर्स चमकता हुआ दिखाई देगा. तो वहाँ पे जाके क्लिक करके जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है ये आप वहाँ पे सुन सकते हैं
0: एड फ्री.
1: और हमारे पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं. रिमेम्बर अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे में हमने रिकॉर्ड किया है AI के बारे में. डू लिसन दिस वीकेंड.
0: बाय.

चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: weekend starts here.
1: Friday Night Rave. Wow.
2: चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: राइट इच्छे वाले भाई साहब लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक है।

0: open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
1: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods

कबड्डी कबड्डी कबड्डी किसकी मोहरू करता।

0: itself into.
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के लिपस्टिक निकलता है ना,

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

दूसरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply. Night Fly.

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Playing Bollywood's biggest hit.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: As a baby, I was burnt in hot water.
2: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
3: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
4: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Budget the Gandhi.

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
3: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
2: जो भी देखे यही पूछे है किसकी जगाती है कयामत कोई।

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: अच्छा,
4: बताओ तुहाडा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.

0: is saying?
1: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
2: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
7: बजे हिट गाने।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: Flight on Hum.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
8: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
13: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
13: Available at selected branches. T's and C's apply. Night flight on.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works. क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
1: As a baby, I was burnt in hot water.
2: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
3: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
4: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight.

Flight on Hum. वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Saturday Breakfast on Hum. Aapka Moment, Krish ka Magic, only on Hum.
1: A very good morning everyone, main Krish aa gaya hoon aapke saath dene ke liye Saturday Breakfast Show mein. अभी से लेकर दिन में 12 तक हमारा साथ रहेगा. प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ और इंटरेस्टिंग बातें अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा. जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हैं, एक एक करके आपको भी शामिल करेंगे. ऑनलाइन अगर आप है, स्पेशल डे है आपका, आप सभी को शामिल करेंगे. बट फर्स्ट वेलकम टू द शो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग क्रिश का बहुत सारा प्यार है.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits एक के बाद एक करके आपके सारे favorite songs हम लेकर आएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Very good morning everyone. आपको बस हमारे साथ रहना है, हमारा साथ देना है, क्योंकि प्यारे गाने और भी है जो एक एक करके मैं आपको सुनाता रहूँगा. 6 to 9 आपके लिए बहुत सारे प्यारे गानों का संगम रहेगा, और फिर 9 से उधर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और जो जुगाड़ जंक्शन है वो प्रोग्राम, मस्ती मीठा है वो भी लेकर आएंगे. देसी बिज, शाउट आउट, ये सभी कुछ आज हमारे साथ होगा.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, क्रिश के साथ है, कि करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आएंगे. काफी लोग अभी जाग रहे हैं, अगर आप जाग चुके हैं अभी अभी, अगर आपने हमें ट्यून इन किया है, रेडियो ट्यून इन किया है, तो स्वागत है आपका. रोवर के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपका भी स्वागत है.

0: बहुत आएगा।
1: Saturday breakfast on Hum. आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
2: इन दिनों काफ़ी सारे गाने रिलीज़ हो रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं कि इसमें से आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, कौन से गाने आपको अच्छा लगता है, ताकि वो गाने हम भी कोशिश करके अपने प्रोग्राम में लेकर आए और जितना ज़्यादा बार हो सके वो पेश करें, क्योंकि कुछ नए गाने हैं जो अक्सर आपके लिए बजता रहता है, एक शिफ्ट में दो तीन बार भी बज सकता है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ऐसे कोई गाना है जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लेटेस्ट रिलीज़ है और आपको बेहद पसंद आ रहा है इन दिनों। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम You're listening to Krish.
1: Let's go. You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है और हमारा साथ रहेगा all the way till midday. एक एक करके आपके लिए तमाम information जो मैं लेकर आया हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा. तो इसके लिए आप हमारा साथ देते रहे. रणवीर सिंह स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रोवर्सी के वजह से एक डिबेट हुआ है. इस पर जानकारी मैं अगले घंटे पर आपको दूंगा. कुछ साइंस रिलेटेड जानकारी भी हमारे पास है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा. जितने भी लोग अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, काम पर से आप घर वापस लौट रहे हैं, आपको भी याद करेंगे अगले घंटे पर.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. Bollywood news भी मैंने सोचा इसी घंटे पर आपके साथ मैं शेयर करूं. एक लाइव स्ट्रीम इन्वॉल्विंग रणवीर सिंह ने ऑनलाइन डिस्कशन ट्रिगर किया है. व्यूअर्स ने डिबेट किया है कि डिजिटल रिलीज प्रैक्टिसेस जो है ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और ये जो इंसिडेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जनरेट कर चुका है ऑन सोशल मीडिया. इंडस्ट्री ग्रुप्स वर आस्क्ड टू क्लेरिफाई देयर पोजीशंस और ये एक ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट टॉपिक बन चुका है अभी जिसमें एक लाइव स्ट्रीम में रणवीर सिंह को मेंशन किया गया था और ये ऑनलाइन डिस्कशन और डिबेट का हिस्सा बन चुका है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स मोर म्यूजिक.

0: Men.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
2: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
3: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
4: Saturday breakfast on Hum.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
5: Welcome back, everyone. A very good morning to all our lovely listeners. आप हमारा साथ दे रहे हैं. Thank you so much. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि weekend में कुछ लोग देर से जागते हैं और काफ़ी लोगों की आदत होती है जल्दी जागना. अगर आप उनमें से एक है और हमारा साथ दे रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं. Welcome to the show. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा टिल मिड डे. एक एक करके आपको प्यारे गाने में सुनाता रहूँगा, बातें भी आपके साथ करता रहूँगा. एंड थैंक्स फॉर योर ग्रेट कंपनी जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इस घंटे पर भी बहुत कुछ है, बैक टू बैक सॉन्ग्स भी मैं आपको सुनाऊँगा. काफ़ी गाने एक के बाद एक आपके लिए रहेगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मालूम सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: You are listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. काफ़ी लोगों को सर्दी जुकाम है जैसे मुझे है और काफ़ी टाइम से ये चलता है क्योंकि जो ठंडी वेदर है शायद हमें रिकवर करने के लिए मौका ही नहीं देता. आप ठीक होते हो फिर यू स्टार्ट फीलिंग हॉरिबल क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू इतना बढ़ जाता है ठंडी वेदर की वजह से. तो अभी मैं प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा आपको जो मुझे मिला है फ्रॉम द रीडिंग जो मैंने किया है अबाउट कि किस तरह से आप कोल्ड और फ्लू को मैनेज कर पाएंगे और कंफर्टेबली रिकवर करने के लिए भी इसमें कुछ टिप्स है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इसी घंटे पर ये

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hoon. Cold and flu ko comfortably manage karna bahut zaruri hai. Thandi weather mein ye recurring problem ban jata hai. To fever aur aches ho to over the counter medications bhi available hai. Ye aap pharmacist se ya apne doctor se salah mashwara le le ki kaun sa aapke liye zyada effective ho sakta hai. Label directions aap zarur follow kare kyunki kuch aise directions hote hain, dosage hote hain jo follow karna bahut zaruri hai. Congestion ko ease karna बहुत जरूरी है. कोई सेलीन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें या नेजल रिंसेस भी आप करें. वोम शावा या इनहेल स्टीम आप करें फ्रॉम अ बाउल ऑफ हॉट वाटर. लेकिन आप ये जितनी भी चीज़ें करें केयरफुली करें, होपफुली किसी के हेल्प के साथ, क्योंकि इससे स्टफीनेस से आप छुटकारा पा सकते हैं या फिर कुछ हद तक रिलीव आपको मिल सकता है. सो थ्रोट जो बहुत ही कॉमन

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: Welcome back, everyone. You're listening to Saturday Breakfast Show. I'm Krish, aapke saath de raha hoon. Very good morning to all our lovely listeners. It's past 8 now. News and sports update ke baad mein, chalo program ki shuruaat karte hain. Sore throat kaise aap manage kar payenge? Cold and flu par hum baatein kar rahe hain ki kis tarah se practical tips ka istemal kar aap effectively manage kar payenge ya comfortably recover ho payenge. Is par jankari hamare haath laga hai, to maine socha aapke saath main share karu. Is ghante par cold and sore throat par kaise को लेकर आप किस तरह से अपने आप को लुकआफ्टर कर पाएंगे, और इसके अलावा खाने पर बातें, और किस तरह से आप बाकी लोगों तक ये प्रॉब्लम को स्प्रेड करने से बचा पाएंगे, आपके तरफ से क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए, इस पर जानकारी. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द शो. क्रिश के साथ है.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You are listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Cold and flu ko comfortably manage karna, is par kuch tips humare paas hai. Sore throat hai, to gargle kare with warm salt water. Warm tea with honey, ye bhi kafi soothing ho sakta hai. Aur ye bhi kaha gaya hai ki khane par agar aap dhyan de rahe hain, aur jo dena zaruri hai, lekin un khano par jo nourishing foods hote, jaise soup, fruit, toast, rice, aur other easy to digest meals. और अगर आपका एपेटाइट कम हो चुका है फॉर अ शॉर्ट पीरियड तो फिक्र ना करें, बट फ्लूइड्स आपको लेना ज़रूरी है और कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूरी है जो आपके बॉडी की ज़रूरत है और आपको ऐसे इजी टू डाइजेस्ट और हेल्थी मील्स खाना ज़रूरी है. रिड्यूसिंग स्प्रेड टू अदर्स, अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली आप धोते रहे, कवर करें कॉफ्स और स्नीजेस, और घर पर रहें अगर आपको फीवर या कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो ताकि बाकी तक ये ना पहुँचे.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Yaad rahe, agle ghante par 9 AM onwards aapke liye rahega Masti Meeta. Ek sawal bhi lekar aaye hain aapke liye jo aapke saath hum share karenge kuch Bollywood se sambandhit kuch character challenge. Main dekhta hu kya mujhe milta hai aapse poochne ke liye. वो मैं लेकर आऊँगा. तब तक अभी आधे घंटे के अंदर मुझे थोड़ा सोचने का भी मौका मिल जाएगा कि व्हाट शुड आई आस्क यू. क्रिश का साथ है. आज 27 जून है. सैटरडे मॉर्निंग है. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: कोल्ड एंड फ्लू को कंफर्टेबली मैनेज करना, ये इस पर भी हमारे पास कुछ टिप है. कहा गया है कि आपको जानना ज़रूरी है कि कब आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत है. इनफैक्ट सिम्टम्स हो या बीमार हो, आपको प्रोफेशनल केयर लेना ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी हो ब्रीदिंग में या चेस्ट पेन हो, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हो, वेरी लिटल यूरिन या सीवियर डिजीनेस, अगर आपका फीवर वेरी हाई हो या काफ़ी दिन तक चले, सिम्टम्स ऐसे जो वर्स होने लगे हो, अंडरलाइन कंडीशंस जैसे एस्मा, हार्ट डिजीज़ या कोई वीकन इम्यून सिस्टम हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर को डे वन से ही सलाह मशवरा ले, क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सही हेल्प की ज़रूरत है. कोल्ड वर्सेस फ्लू पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: 80s के रेट्रो गाने

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ताज़ा तरीन मसालेदार लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप भी हम आपके लिए लेकर आए हैं. आपके फेवरेट स्टार्स क्या कर रहे हैं इन दिनों, इस पर जानकारी. अगर आप मनोज बाजपाई फैन हैं तो इन्होंने कहा है कि इनका दिल अभी भी इंडी सिनेमा को बिलोंग करता है. रिफ्लेक्टेड ऑन हिज करियर चॉइसेस, और ये रिफ्लेक्शन करते हुए इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट सिनेमा ये इनके सबसे दिल के करीब है और बिग कमर्शियल फिल्म्स ये करना एंजॉय करते हैं, लेकिन ही अप्रोचेस देम डिफरेंटली. इन्होंने कहा है कि इंडी फिल्म्स ने इनकी ज़िंदगी को और इनके आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को नाम दिया है, पहचान दिया है, और ये शुक्रगुजार है इस बात को लेकर. और इन्होंने कहा है कि हमेशा इनका दिल इंडियन सिनेमा को ही बिलोंग करेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और बॉलीवुड न्यूज़ अगले घंटे पर आपके लिए हम लेकर आएंगे. याद रहे अगले घंटे पर मस्ती मीठा, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए.

0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
8: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when you buy food,
9: noodles,
8: money loops back.
9: Noodles.
8: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
10: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ. अच्छा,
10: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
11: Mrs. Singh.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
14: Hi there, sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
15: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.

0: Saturday Breakfast on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: A very good morning, everyone. Welcome back to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 27 जून आज है. अगर आपका जन्मदिन है, बहुत ही जल्दी आपको विश करेंगे, याद करेंगे, बेस्ट विशेस देंगे. लेकिन जबकि अभी 9 o'clock हो चुका है और आपको पता है कि द मोस्ट अवेटेड मस्ती मीठा हम लेकर आते हैं आपके लिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए ऑन हम सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मस्ती मीठा.
0: मस्ती मीठा ऑन हम.
1: वेलकम एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. मस्ती मीठा में आपका स्वागत करता हूं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और इस घंटे पर कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर मैं आता हूं आपके लिए. अब एक बॉलीवुड कैरेक्टर के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं और आपको मैं 4 ऑप्शंस दूंगा. आपको बताना होगा कि जो कैरेक्टर का नाम ऑन स्क्रीन क्या है, ठीक है? और अगर आपको पता है कि किस एक्टर ने किया है, एक्ट्रेस ने निभाया है इस रोल को, आप वो भी मुझे बता सकते हैं. हमारा जो सवाल है बहुत ही सिंपल. I talk a lot and wear my heart on my sleeve. I meet a quiet businessman during a train journey. My optimism changes the lives of people around me. I love saying exactly what's on my mind. Options mein Rani, B Geet, C Naina ya D Safina. Answer kya hai hamare paas, aap 5599 par bheje. Main Krish aapke saath de raha hoon.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: मस्ती मीटा आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं लेकर आऊँगा। ये कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर के बारे में हम बातें कर रहे हैं, एक ऐसा किरदार जो आइकॉनिक किरदार रह गया है, अभी तक भी बातें कर रहे हैं, बहुत बोलती है या बोलता है, इनफैक्ट मैं आपको इतना आई विल गिव इट अवे, बहुत बोलती है और खुल के लाइफ जीती है। एक बहुत ही शांत बिजनेसमैन को ये मिलती है ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी और इनका ऑप्टिमिज्म लोगों की नज़रिया या जिंदगी बदल देता है जो इनके अराउंड होते हैं, और जो भी इनके मन में आता है ये बोल देती है। रानी इज द ऑप्शन ए, बी गीत, सी नैना या डी सफीना। अब हमारे पास ये किरदार का नाम, मतलब कैरेक्टर का नाम भेजे 5599 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है आपके लिए।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. काफ़ी बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ और शेयर भी करूँगा. पंकज त्रिपाठी ब्रदर अटैक्ड इन बिहार, ये गोपालगंज बिहार इंडिया में हुआ है, जहाँ पर पंकज त्रिपाठी जो बहुत ही फेमस एक्टर है, इनके भाई को अटैक किया गया था विद एन एक्स, और पुलिस ने कन्फर्म किया है कि एक सस्पेक्ट है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है. सीरियस इंजरीज इनको हुए हैं, अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है इनटू दिस इंसिडेंट, और काफ़ी फैन शॉक हुए हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं अपने फेवरेट एक्टर पंकज को, क्योंकि पंकज अलग अलग किरदारों में आए हैं और अपनी जगह इतनी मज़बूत बना चुके हैं बॉलीवुड में कि इनके बारे में कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है तो फैंस गेट रियली अफेक्टेड. जैकलिन फर्नांडिस enters the horror genre, इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

ऐसा भेज रहे हैं, काफ़ी लोग रानी लिख करके भेज रहे हैं, कुछ लोग सफीना लिख करके भेज रहे हैं। आई मस्ट से कि इतना मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि सफीना इज़ नॉट द राइट आंसर, ऑल्दो इट कैन बी अ क्लोज मैच। ये कौन है? आई टॉक अ लॉट एंड वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव। आई मीट ए क्वाइट बिजनेस मैन ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी। माई ऑप्टिमिज्म चेंजेस द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड मी। और आई लव सेइंग एग्जैक्टली व्हाट्स ऑन माई माइंड। ये क्या है? कौन से कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं? चार ऑप्शन: ए रानी, बी गीत, सी नैना, डी सफीना।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Winter आ गया है at Mitre 10 Mega Westgate और Henderson with deals on Karcher 18 volt garden skins और 20% off Mica thermic and selected convection heaters. Plus spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
2: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
3: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
5: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। अगले घंटे पर जुगाड़ जंक्शन लेकर आएंगे और इस घंटे पर जो मस्ती मीठा है इसका सही जवाब है गीत। गीत करीना कपूर ने निभाया था इस किरदार को फिल्म जब वी मेट में, और बहुत बात करती है। शी वेज अ हार्ट ऑन हर स्लीव। शाहिद कपूर से मुलाकात होती है, जो बहुत ही क्वाइट बिजनेसमैन होता है एक ट्रेन जर्नी के दौरान। इनका जो पॉजिटिविटी है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। इनफैक्ट शाहिद कपूर की भी जब इस फिल्म में जो जिस तरह से वो नज़र आई थी, शाहिद कपूर को काफ़ी अलग नज़रिया दे दिया इन्होंने लाइफ में, और जो भी इनके मन में आता है ये बोल देती है क्योंकि ये खुद की सबसे फेवरेट है। काफ़ी लोगों ने गीत हमारे पास जवाब भेजा है, थैंक यू सो मच।

0: breakfast on Hump.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hump.
2: A very good morning, everyone. Saturday breakfast show jari hai, 27th June hai. Aur main Krish aapka saath de raha hun. Thank you so much for your great company from 6 a.m. to 10 now. Aur 12 tak hamara saath rahega. Another 2 hours to go. Aur please aap hamara saath is tarah se dete rahiyega. Jaise aap dete aaye hain, bahut hi wonderful interaction aapke saath ho raha hai. Bahut mazedar ye time aapke saath beet raha hai. So thank you so much for your time. Is ghante par aapko pata hai, hum lekar aate hain Jugaad Junction, jahan par share karte hain aise information jo life ko aur easy bana sakta hai. कुछ ऐसे लाइफ हैक्स, कुछ ऐसे टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स वो लेकर आते हैं. शुरू करते हैं आपके लिए जुगाड़ जंक्शन.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: वेलकम एवरीवन टू जुगाड़ जंक्शन. आज हम काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो लाइफ को और आसान बना सकता है, कुछ हेल्प भी कर सकता है हमें बहुत चीज़ों में. हेल्थ पर बातें करेंगे, किस तरह से आप अपने हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव कर पाएंगे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के, कुछ स्मॉल चेंजेस लेकर आके. सोशल स्किल्स को भी कैसे आप और बेहतरीन बना सकते हैं, इनफैक्ट ट्रैवल को भी कैसे यादगार बना सकते हैं, इसी घंटे पर आपके लिए रहेगा. वेलकम बैक एवरीवन, जुगाड़ जंक्शन में स्वागत है आपका.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: जुगाड़ जंक्शन में अगर आप अपने हेल्थ को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपल टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. ड्रिंक जो वाटर है ये विजिबल रखें. लोग ज़्यादा पानी पीते हैं अगर बॉटल इज़ विद इन आर्म्स रीच. फ्रूट को आप अपने आई लेवल पर रखें क्योंकि जो कुछ भी आप पहले देखते हैं वो खाने की संभावना सबसे पहले ज़्यादा होती है. वॉक ड्यूरिंग कॉल्स मेरे लिए बहुत लागू होता है. अगर आप एक 15 मिनट का भी कॉल करते हैं दिस कैन ईजिली बिकम 1,000-2,500 स्टेप वॉक. तो आप चलने जब फ़ोन पर आप बात करते हैं तो आप ज़रूर चले क्योंकि आई थिंक इससे आर्टिकुलेशन भी अच्छी होती है, बातें भी अच्छी करते हैं आप और वॉक भी हो जाता है काफ़ी. कूलर रूम में सोने से ये काफ़ी बेटर फील करेंगे क्योंकि वार्म रूम हो तो शायद, इनफैक्ट ठंडी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर समर का टाइम हो तो कूलर रूम में आप शायद और कंफर्टेबल फील करेंगे. यू विल स्लीप बेटर देन वार्म रूम्स अगर ज़्यादा गर्मी हो बाहर. अभी तो फ़िलहाल ये लागू नहीं होता है हमारे लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Winter aagya hai at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson with deals on Karcher 18 volt garden skins or 20% off Mica thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: HBO Max is the all-killer, no-filler.
7: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
6: Exactly.
7: Right, we'll see. What are they called?
6: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, One Battle After Another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
7: Whoa, okay, I get it. Fair call.
6: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
10: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par. You're listening to Krish.
13: Let's go! You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है। New Zealand Art and Culture Charitable Trust की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है। श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर। रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है। सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है, 8 अगस्त को होगा। और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है, जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त। क्रिश के साथ है, और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलैंड आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए। ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे, इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है। 25 जुलाई को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Vaise Jugaad Junction mein kuch aur interesting information aapke saath social skills ke liye kaha gaya hai ki open questions agar aap poochenge to isse social skills kafi acha ho sakta hai. Jaise instead of did you enjoy it, aap pooch sakte hai what was the best part, kyunki isse aapke interaction skills bhi badh sakta hai. After asking a question, aap intezar kare kyunki log kafi thoughtful answers dene ke liye thoda time lete hain. और आपको एक पर्सनल डिटेल याद रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई अपना हॉबी या पेट या कोई ट्रिप के बारे में बताता है, आस्क अबाउट इट नेक्स्ट टाइम अगर आप उनसे मिलते हैं. ये कन्वर्सेशन को काफ़ी मीनिंगफुल बना सकता है. ट्रेवल की बात करा जाए तो एक दिन आप अर्ली पैक कर ले, क्योंकि फॉरगॉटन आइटम्स जो होता है आप काफ़ी ईजिली रिमेंबर कर पाएंगे अगर आप पहले से पैकिंग करते हैं, रादर देन पैकिंग अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि उससे में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है. मैं फिर आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो. हाँ.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
2: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
3: Bunnings Warehouse.
2: Lowest prices are just the beginning.
4: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests, built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
6: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
7: Kogan Mobile. True Aussie value.
6: Terms and conditions apply.
8: From DC Studios, Supergirl has landed in cinemas now. Starring Millie Alcock with David Corenswet as Superman and Jason Momoa as Lobo. Don't miss this epic galaxy-hopping blockbuster. Supergirl in cinemas now.
9: Let's get to it.
8: Rated M.
10: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or creating beaded animals to painting a Matariki masterpiece, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
13: It is our final hour, so welcome everyone. Welcome back to the show. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ, और अभी इस घंटे पर 11 to 12 के बीच आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग खबरें, बातें आपके साथ शेयर करेंगे, सामाजिक सूचनाएं और क्या कुछ इवेंट्स होने को है, और हम पॉडकास्ट पर भी बातें करेंगे इसी घंटे पर आपके साथ. तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट देसी बिज शाउट आउट फॉर यू.
11: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट.
13: वेलकम एवरी वन. देसी बिज शाउट आउट में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितने भी लोकल बिजनेसेस को हम याद करते हैं, आपको हम सलाम करते हैं, आपके एफर्ट्स को, आपके सिर्फ कम्युनिटी सर्विस के लिए आपका जो साथ हमें मिलता है, सो थैंक यू सो मच. अगला गाना आप सभी के नाम करते हैं. आप अगर एक लोकल बिजनेस ओनर है, आप अगर एक डायरेक्टर है, बिजनेस डायरेक्टर है, और आपका बहुत बड़ा योगदान हमारी कम्युनिटी में है, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत मेहनत लगता है एक बिजनेस को रन करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी. अगला गाना आप सभी के लिए मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एंड वेलकम बैक टू द शो.

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं कृषाव के साथ दे रहा हूँ. हम पॉडकास्ट के बारे में जितना बातें करें उतना ही कम है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इनके साथ होता है. अनफिल्टर्ड ड्राइव में रिसेंटली रिजबे और सैंडी ने बातें किया निवेदिता विज के साथ में, डिस्कसिंग थैलेसीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द साउथ एशियन कम्युनिटी. तो पॉडकास्ट में ये इन बातों पर गौर फरमाया गया है और आप ज़रूर सुने. वन सिंपल स्क्रीनिंग फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है, तो आप लास्ट मिनट तक इंतजार ना करें, टू लेट तक इंतजार ना करें. साइलेंट कैरियर्स एक हिडन जेनेटिक थ्रेट होता है जो साउथ एशियन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बन चुका है. क्यों अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूरी है, वाइटल कन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए, और क्यों साउथ एशियंस हायर रिस्क होते हैं फॉर थैलेसीमिया, और क्या आपको जानना ज़रूरी है. निवेदिता शर्मा विज के साथ ज़रूर जो बातें हुई है ये आप सुने. ये एक सीजनड हेल्थ प्रोफेशनल है, अ मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस पायनियरिंग सेल्फ केयर. और साथ ही में अगर और जानकारी के लिए आप ड्राइव टेक्स्ट करते हैं 5599 पर, तो फुल ऑडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगा. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये सुनने के लिए आप BF टेक्स्ट करें 5599 पर और कैचअप कीजिए अपने आप को या अपने साथ ऑन पॉडकास्ट जो हम पर आपके लिए जारी है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करता है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind sirf Rova par.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hoon. What if ye Easter wasn't just a long weekend, lekin sun, stories, chaos aur a crew heading off together? Kaisa rahega ye? Zara sochiye. In fact, iske liye ye kya hai aur ye kiske bare mein hum baatein kar rahe hain, iske liye aapko bas hame sunte rehna hai. Stay tuned taki aapko ये मिस नहीं करना है और आपको ये जानना है कि किस चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं या क्या अनाउंसमेंट है जो हम पर आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा. ईस्टर एक लॉन्ग वीकेंड की तरह ना होगी, लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो आप मिस नहीं करना चाहते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ है और नए गाने और प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Krish ka saath hai aur hamara saath midday tak rahega. Aapke liye desi biz shout out jari hai jisme hum local businesses ko shamil kar rahe hain. Agar aap hame abhi sun rahe hain, आप लोकल बिजनेस है और आप के यहाँ पर हम की गूंज है, तो आपके जितने भी स्टाफ को हम याद करते हैं, जितने भी कस्टमर्स आपके यहाँ पर है उनको भी शामिल करते हैं, और जितने भी मैनेजमेंट है आपको भी अगले गाने पर शामिल कर रहे हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
3: लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है, एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे एक के बाद एक आपके सब सारे फेवरेट सॉन्ग्स जो है जो रह गए हैं वो भी आपके लिए हम शामिल करेंगे जाने से पहले किचन के बारे में अगर टिप मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट ओवर हर्ब्स को आप आइस क्यूब में फ्रीज़ करें ओलिव ऑयल ऐड करें या वोटा और उनका आप फ्रीज़ कर ले अगले टाइम के लिए बहुत ईजी कुकिंग पोशंस आपके लिए बन सकता है और प्रिजर्व भी रहेगा काफ़ी टाइम के लिए सरप्राइजिंगली इफ़ेक्टिव चीज़ों के बारे में बातें करें तो पुट जो अलार्म अक्रॉस द रूम क्योंकि आपको फिजिकली उठकर अलार्म को बंद करना पड़ेगा और जैसे ही खाट से आप बाहर होते हैं नींद भाग जाती है और जल्दी उठने का फिर फ़ायदा तो आपको पता है जल्दी दिन शुरू होती है काम पर लेट पहुंचने से आप बच पाएंगे और सभी चीज़ों का शुरुआत टाइम पर होगी मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ